सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 6 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की

मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5,000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री

0: और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:05 हैं, लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति। चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तो बहुत सारे विकार मन के अंदर पड़े रहते हैं, जिसके कारण जीव भ्रमित हो जाता है और उन संस्कारों वश कई कर्मों को करने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए शास्त्र भी यही कहते हैं कि चित्त शुद्ध तीर्थ जो है सबसे बड़ा तीर्थ है। इसमें स्नान किए बिना जीव की मुक्ति नहीं है, जीव का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब तक हम उस चित्त शुद्धि तीर्थ तक नहीं पहुंच पाते, तब तक हमारा उद्धार होना संभव नहीं है। ज्ञान ज्योति।

ज्ञान ज्योति के बाद वंदना कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भजन। सबसे पहले वंदन करते हैं श्री गणेश जी का, जो मंगलकारक हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। परमपिता परमेश्वर कृपालु हैं, दयालु हैं, जीवों पर दया करने वाले हैं, इसलिए हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से। आइए वंदना करते हैं भोलेनाथ की, जो सबको सुख देने वाले हैं और विषपान करने वाले हैं जगत के हित के लिए। आइए उस नीलकंठ महादेव को प्रणाम करते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से। समय बताते हैं आपको, 6:30 हो चुके हैं और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए, बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंडी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय। शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार। 7:00 हिंदी समाचार होंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। आज मंगलवार है और 7:35 पर पहाड़ी बोली में कार्यक्रम होगा लोक संसार। समाचार प्रभात का अंक आप सुनेंगे 8:00, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुनते हैं 8:30 पर। 8:35 पर विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:20 पर। 9:30 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे प्रातः 10:00। 10:05 पर लघु वार्ता में आज का विषय है बढ़ती गर्मी में आपका खान पान कैसे हो, झूमते तराने कार्यक्रम सुनेगा 10:15 पर। लोक रंग पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा 10:45 पर। 11:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आज आप सुनेंगे कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत। सैनिकों के लिए कार्यक्रम होगा 12:30 पर। 1:00 से पुणे आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान मिड डे न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से लेके जाएंगे। 2:00 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर सुनिएगा विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे और 3:05 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार लेके जाएंगे। 5:05 पर आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। यू मंच कार्यक्रम होगा 5:30 पर। और 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने आप सुनते हैं 6:05 पर। और किसानों और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 6:30 पर। 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे। भक्ति संगीत आप सुनेंगे 7:05 पर। रौनकांग रायदियाँ ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:25 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से लेके जाएंगे सायं 7:45 पर। 8:00 आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। समाचार संध्या का अंक आकाशवाणी दिल्ली से ले होगा 8:45 पर। रात्रि 9:00 News@9 विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम पुनः आप सुनेंगे 9:15 पर। आज मंगलवार है और रात्रि 10:00 कार्यक्रम होगा साहित्य जगत। चांदनी रात कार्यक्रम आप सुनते हैं 10:30 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे रात्रि 11:00। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

0: हम आपको पुनः याद दिला दें, 7:05 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर और 7:35 पर पहाड़ी बोली में कार्यक्रम होगा लोक संसार। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 6:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार और 7 आप सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणं, षड्भ्यः पद्म भूषणं, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्म विभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ. एन. राजम् अपि पद्म विभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, HD कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइम्नॉल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् 21 दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामि 2-3 दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्णतरंगस्य पूर्वसूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: 错啊。
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के ठीक 7:00

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: 7:05 और 42 सेकंड हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपसे साझा करेंगे आज का विचार। आपको इंतज़ार रहता है आज के विचार का, क्योंकि विचार हमें एक मार्ग प्रशस्त करता है, हमारी जो ऊर्जा है उसकी दिशा तय करता है। तो कहा जाता है सच्ची तरक्की वही है जिसमें ताकत से पहले इंसानियत की चिंता हो। अगर हम उस इंसानियत की चिंता नहीं करेंगे और अपनी तरक्की के बारे में ही सोचेंगे तो ऐसी सोच पूर्व ग्रहों से ग्रसित होती है जो केवल और केवल हमारे स्वार्थों तक सीमित रहती है। और इससे हम अपना भला तो कर लेते हैं लेकिन हमारे आसपास जो हमारे साथी हैं, हमारा समाज है, आस पड़ोस है, अगर उनकी भावनाएं आहत होती हों तो ऐसे में उसे तरक्की नहीं कहा जाता। तो ये विचार का सार यही है कि सच्ची तरक्की वही है जिसमें हमारी ताकत से पहले हम इंसानियत सर्वत्र का जो भला है उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और अब आपको ले चलते हैं संगीत की ओर, इससे पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: और सुनिए अंतराल के बाद ये गीत।

दिल अपना प्रीत प्राय, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से।

0: और आपको लिए चलते हैं आज के इतिहास की ओर अगले पड़ाव में। इससे पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: और अगले पड़ाव में है आज की महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाएं। आज 26 मई है और 26 मई के दिन क्या कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने की सीमा को 1950 में ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था। जापान में 1983

में आए भूकंप में 104 लोगों की मौत हो गई थी। दक्षिण लेबनान ने इजरायली सुरक्षा बलों के हटने पर लाखों हिजबुल्लाह समर्थकों ने 2000 के करीब अपने नेता शेख हसन नसरल्लाह के साथ विजय रैली निकाली थी आज ही के दिन। चीन का विमान सन 2002 में समुद्र में गिरा जिसमें 225 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन विज्ञान जगत में सन 2006 में एक शोध के मुताबिक एड्स का विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चिंपैंजियों से फैला, इस बात की जानकारी मिली थी। भारत और जर्मनी के बीच सन 2007 में रक्षा समझौता संपन्न हुआ था आज ही के दिन के 26 मई को ही, और 26 मई को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाज व खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा तय करने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी सन 2008 में। और जिन महान हस्तियों का आज जन्म हुआ है उनमें सबसे पहले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक छुगन राज चौपासनी बाला का जन्म 1912 में आज ही के दिन हुआ था। अरुणा राय का जन्म 1946 में हुआ था, जो भारत की उन महिलाओं में एक हैं जो बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी हैं। बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 में 26 मई को ही हुआ था। और आज ही के दिन दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा का जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। और जिनका निधन आज हुआ है उन महान हस्तियों में से सबसे पहले केपीएस गिल, सन 2017 में उनका निधन हुआ। वो पंजाब के 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन 1986 में आज के दिन यानी 26 मई को ही हुआ था।

0: ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाएं जिनका जिक्र हमने आपसे किया, और आपको लिए चलते हैं फिर से गीतों की ओर, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम,
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी,
2: हाँ,
3: आपके नाम?
4: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बात एक रात की। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर व साथियों की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज।

और अंतराल के बाद लिए चलते हैं आपको आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। अब तक का क्वांटम ऑप्टिक्स, इसमें माना जाता रहा है कि क्वांटम लिगेंड फोटोन बनाने के लिए स्थिर व शक्तिशाली लेजर जरूरी होती हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने इस धारणा को चुनौती देते हुए सिर्फ सामान्य सूर्य के प्रकाश की मदद से ऐसा प्रयोग कर दिखाया है जिसे क्वांटम इमेजिंग तकनीक में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शोधकर्ताओं ने धूप से उत्पन्न आप्स में जुड़े हुए क्वांटम फोटोनों की मदद से घोस्ट इमेजिंग तकनीक द्वारा तस्वीरें पुनर्निर्मित की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 66 हस्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में सोमवार को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत और शास्त्रीय संगीतकार एवं वायलिन वादक एन राजसम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस साल 131 गणमान्य लोगों को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। अन्य 65 विजेताओं को अगले चरण में सम्मानित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और अलग शौचालय न होने की वजह से लड़कियों को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यह संभव बनाया जाए, और ये कहा गया है कि उसके निर्देशों को पूरी तरह से और सही भावना के साथ पालन किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी तब की जब केंद्र सरकार ने बताया कि कोर्ट के 30 जनवरी के फैसले के बाद सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में तेजी आई है।

आज की सुर्खियों के बाद चलते हैं खेल खबरों की ओर। और पहली खबर है, 15 साल से वैभव सबसे तेज, टॉप 10 वेटर्स में से 7 की टीमें प्लेऑफ में, पेपर्स का दबदबा। फाइनल के लिए पहली जंग आज, आईपीएल 19 का अहम प्लेऑफ चरण मंगलवार से शुरू होगा। पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला धर्मशाला के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत स्टेडियम में यह इस सीजन का चौथा मैच होगा। वहीं लीग इतिहास में पहली बार धर्मशाला किसी आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले की मेजबानी करेगा। यह मुकाबला दोनों टीमों की खिताब की उम्मीदों के लिए अहम है। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी।

सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के जियोवानी पेरिकार्ड को हराकर फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में प्रवेश किया है। जोकोविच ने मुकाबला 4 सेटों में 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 से जीता। अगली खेल खबर आईपीएल की बात करते हैं तो 3 टीमों ने 4 खिलाड़ी रिप्लेस किए, रिटेन भी कर सकेंगी। तो अब आपको लिए चलते हैं फिर से संगीत की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने अनीता फिल्म का गीत सुना। युगल सर थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। इसी के साथ सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में कार्यक्रम लोक संसार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संसार। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात का अंक, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
3: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द

0: गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर

नमस्कार। हिमाचल डायरी के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। अब अंक विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में आज मंगलवार को प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान होगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्य के अलावा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के करीब 7200 प्रत्याशियों के लिए करीब 16 लाख मतदाता वोट डालेंगे। प्रदेश भर में 16,16,539 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 3,554 संवेदनशील, 1585 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ जो है बताए गए हैं। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान कराने के लिए 8,198 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य के चुनाव नतीजे मतदान के बाद शाम को ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए मतों की गिनती 31 मई को होगी। मतदान बैलेट पेपर से होगा। हिमाचल प्रदेश में दूसरे चरण में 28 मई को 1274 और 30 मई को तीसरे एवं आखिरी चरण में 1187 पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि सीसीटीवी की निगरानी में मतदाताओं की मतगणना की जाएगी।

केंद्र सरकार ने बकरीद की छुट्टी में बदलाव किया था, अब हिमाचल सरकार ने भी इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। पहले 27 मई को ईद उल जुहा बकरीद की सरकारी छुट्टी थी, लेकिन अब 27 मई की जगह 28 मई को सरकारी छुट्टी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में बीते दिनों हुए 25 नगर परिषदों और 23 नगर पंचायतों में हुए चुनावों के विजेताओं की अधिसूचना जारी कर दी है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची की ओर से जारी अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। निदेशक जनगणना निदेशालय दीप शिखा शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री से भेंट कर जनगणना 2027 के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत करवाया। निदेशक ने जनगणना के लिए दो चरणों में करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई तक के बीच होगा। इस बार एक नई अधिसूचना स्वगणना का विकल्प दिया गया है, जो स्वगणना पोर्टल पर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल आईबीआर वॉयलर प्रणाली में बदलने की मंजूरी देने वाले राज्य स्तरीय समिति के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने खैर की लकड़ी के इस्तेमाल पर लगी 7,500 कुंतल की सीमा को हटाने से भी इनकार कर दिया है। अदालत ने उन कच्चा कत्था निर्माताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया जो अपने प्रतिनिधियों की और प्रतिस्पर्धाओं की तकनीक अपग्रेड करने से रोकना चाहते थे और खैर की लकड़ी पर लगी इस्तेमाल की सीमा हटाने की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के अपमान करने की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

बचना ऐ हसीनो फिल्म से आप ये सुन रहे थे गाना। इस गाने को लिखा था अन्विता दत्त ने और इसका म्यूजिक विशाल शेखर ने तैयार किया था। इसी जोड़ी का सुनते हैं अगला गाना दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी की आवाज़ में उनके साथ हैं श्रेया घोषाल और साथी।

मन मतवाला क्यों हुआ इसकी तो खबर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा हिंट दे रहा है। कार्यक्रम का अगला गाना बैंड बाजा बारात फिल्म से। श्रेया घोषाल की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है सलीम सुलेमान का।

0: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किल दिल फिल्म से। अरिजीत सिंह, नेहरा जोशी की आवाजों में शाद अली के बोल हैं और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।
1: हमने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

से ये गाना। इस गाने की शुरुआत में आपने सुनी गुलजार की आवाज़, और इस गाने को लिखा भी था गुलजार ने, म्यूज़िक तैयार किया था शंकर एहसान लॉय ने। गुलजार और शंकर एहसान लॉय इस जोड़ी का सुनते हैं अगला गाना, बंटी और बबली फिल्म से, सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: पैशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतज़ार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतज़ार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतज़ार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने को हैं, बस थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: टॉक स्टूडियो नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आज 1293 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी। राज्य में 28 मई को दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज दोपहर बाद 3 बजे थमेगा खुले में प्रचार, उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकेंगे जनसंपर्क। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने के चलते मिल्क फेड ने दूध के दामों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से शुरू। और IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज धर्मशाला के सामने होंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक

0: निकलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले जा रहे वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि मतदान कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए 8,198 मतदान दल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्यों से मतपेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी।
1: देखिए, आज प्रातः 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारा प्रथम चरण में 1,293 पंचायतों में चुनाव जारी है। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफी स्टेप उठाए हैं। सभी बेल्ट बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्कैनर लगाया है, तो कोई भी बेल्ट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वो स्कैन किया गया है। स्कैन करने उसकी एक आईडी आ गई और वो जब काउंटिंग पे जाएगा तो वहाँ फिर स्कैन किया जाएगा, ताकि तय हो बेल्ट बॉक्स पोलिंग स्टेशन पे यूज हुआ है वही बेल्ट बॉक्स काउंटिंग के केंद्र पे पहुंचा है। जहां तक काउंटिंग का सवाल है, हर काउंटिंग सेंटर की 100% जो है वो CCTV कवरेज की जाएगी, ताकि काउंटिंग के में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और परिणाम जो है समय पर घोषित।
0: इस बीच 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा है कि प्रदेश में कुल 3,754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में आज मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण के तहत 1,274 पंचायतों में 28 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 1,187 पंचायतों में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 3,554 मतदान केंद्र संवेदनशील जबकि 1,585 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लोगों को इस बार स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है और 1 से 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्कफेड ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्कफेड का खुला दूध 51 से बढ़कर 53 रुपये और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मिल्कफेड ने पिछले 7 नवम्बर से दूध के दाम 3 से 4 रुपये तक घटाए थे। मिल्कफेड हिमाचल में सबसे बड़ा सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ है। रोजाना हजारों लीटर दूध की सप्लाई मिल्कफेड के जरिए होती है। दाम बढ़ने से अब दूध से बनने वाले सभी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा है कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सचू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
2: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बालालाचा पास, नकीला पास, तंगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
0: नशा तस्करी के नेटवर्क को ख़त्म करने के अभियान में शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पंजाब के तरनतारन, मोगा और हरियाणा के अंबाला से 3 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। ASP ने बताया कि शिमला पुलिस ने इस साल अब तक नशा तस्करी के अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 32 नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसमें NDPC एक्ट के तहत 134 मामले दर्ज हुए हैं और 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। पंजाब किंग्स पर जीत के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। टीम ने 14 मैचों में 18 अंक हासिल कर बेहतर रन रेट के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। IPL के इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही आने वाले दिनों में लू की संभावना को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहते हुए जरूरी तैयारियां पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इन विभागों ने मुख्यतः स्वास्थ्य, स्कूल, कृषि व वन विभाग शामिल है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
3: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे मंडी जिला में अलर्ट जारी कर दिया है। सुंदरनगर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि यह तापमान मंडी शहर में 38 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू और कम बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने सभी विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तैयारियां की गई हैं, जबकि स्कूलों में बच्चों के लिए ठंडे पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थानों में पेयजल सुविधाएं शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग को जंगलों में आग की घटनाओं पर नजर रखने और कृषि विभाग को किसानों को फसलों को गर्मी से बचाने के उपाय बताने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है सीधी धूप से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर अखबारों ने पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 1293 पंचायतों को आज मिलेंगे प्रतिनिधि। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में 1293 पंचायतों में चुनाव आज, 16 लाख मतदाता चुने गए गांव की सरकार। दिव्य हिमाचल बतौर मुख्यमंत्री लिखता है देश में सर्वश्रेष्ठ बनेंगे हिमाचल के स्कूल। हिमाचल दस्तक की एक खबर है सर्दियों के लिए बिजली बोर्ड ने खरीदी एडवांस बिजली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आज 1293 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी। राज्य में 28 मई को दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज दोपहर बाद 3 बजे थमेगा खुले में प्रचार। उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकेंगे जनसंपर्क। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने के चलते मिल्क फेड ने दूध के दामों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से शुरू। और IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज धर्मशाला में आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। 9:30 हुए हैं अब से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
5: गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
6: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
7: श्रोताओं नमस्कार।
8: सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनू वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ मारदा ओ मारदा।
7: जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेकअप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हम हाँ, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोग

0: को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। 5 बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लघु वार्ता, बढ़ती गर्मी में आपका खान पान कैसे हो।

जी हाँ, गर्मी के मौसम के लिए आपका खान पीन कैसा हो, आइए इस पर बातचीत करते हैं आपसे। गर्मी में ठंडक, नमी और सेहत बनाए रखने के लिए सबसे बेहतरीन डाइट प्लान हमें बनाना ज़रूरी है। हम क्या खाएं, क्या ना खाएं और गर्मी में ऊर्जा और स्फूर्ति के लिए आसान रेसिपी कैसे बनाएं। गर्मी में आपको विशेष आहार की आवश्यकता क्यों होती है? जी हाँ, गर्मी के मौसम में सही आहार के सुनहरे नियम क्या खाएं, गर्मियों के सुपर फूड्स की सूची, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। एक दिन की गर्मियों की डाइट योजना का नमूना, गर्मियों के लिए झटपट और आसान रेसिपीज जिन्हें आप आजमा सकते हैं। अपने शरीर की बात सुनना, मदद लेनी चाहिए। गर्मी की चिलचिलाती धूप न सिर्फ हमारे कपड़ों पर असर डालती है बल्कि हमारी पोषण

और ऊर्जावान बनाए रखें। यह व्यापक गाइड आपको ग्रीष्मकालीन पोषण के सिद्धांतों, अपनी थाली में क्या शामिल करना है क्या नहीं करना है, एक सरल टिकाऊ योजना बनाने, खान पान के तरीके को बदलकर हम उच्चतम स्वास्थ्य और स्फूर्ति प्राप्त करें, आपके शरीर पर गर्मी का प्रभाव, गर्मी के मौसम में शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक शारीरिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिक पसीना बहता है जिससे पानी और सोडियम व पोटाशियम जैसे आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी उनकी कमी हो जाती है, इससे जल्दी ही निर्जलीकरण हो सकता है जिसके शुरुआती लक्षणों में थकान, सिरदर्द, चक्कर आना शामिल हैं। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी में पाचन क्रिया या चयापचय धूर्त धीमी हो सकती है जिससे भारी भोजन बोझिल लगने लगता है और अक्सर अपच और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त पोषण योजना अपनाने से अनेक लाभ मिलते हैं, मुख्य रूप से या निर्जलीकरण, इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन से बचाव करता है, साथ ही या आसानी से पचने वाली कैलोरी प्रदान करके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। कैलोरी प्रदान करके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में हमें मदद मिलती है जिससे शरीर पर अधिक दबाव नहीं पड़ता। मौसमी फलों और सब्जियों से भरपूर आहार प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाता है जो त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और ये पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने में विटामिन की पूर्ति करते हैं। कुल मिलाकर यह पूरे मौसम में हल्का, अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करने का एक समग्र तरीका है। गर्मी के मौसम में सही आहार लेना चाहिए और शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेशन सर्वोपरि है। वैसे तो दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए इसे कहीं ज़्यादा पीना ज़रूरी है। ऐसे तरल पदार्थों का सेवन हम करें जिनमें प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स हों। इनमें नींबू पानी बिना ज़्यादा चीनी वाला, नारियल पानी, छाछ या घर पर बना फलों का पानी शामिल है। एक अच्छा नियम यह है कि एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में पानी पीने के बजाय पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। याद रखें, तरबूज और खीरा जैसे फल भी आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हल्के और आसमानी रंग के कपड़े भी पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों को भी अपनाना होगा। भारी, मलाईदार और जटिल भोजन के बजाय हल्के विकल्प चुनें। तलने के बजाय भाप में पकाना, ग्रिल करना, भूनना जैसी विधियों पर हमें ध्यान देना होगा। पाचन तंत्र पर अधिक भार ना पड़े इसलिए कम मात्रा में बार बार भोजन करें। दाल, दही और मौसमी सब्जियों से बने भोजन, लाल चीज़ें, गाढ़ी मलाईदार कड़ी की मात्रा में कहीं अधिक आसानी से हमें ये पच जाते हैं क्योंकि पाचन के दौरान अधिक ऊष्मा हमें उत्पन्न मिलती है।

बढ़ती गर्मी में खान पान में हल्का, आसानी से पचने वाला और पानी से भरपूर हाइड्रेटिंग भोजन हमें शामिल करना चाहिए। कैफीन, ज़्यादा चीनी, अत्यधिक मसालेदार या तला भुना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी और अंदरूनी गर्मी को बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा आपको कि पानी दिन भर में पर्याप्त कम से कम 3-4 लीटर पानी हमें पीना ज़रूरी है। प्राकृतिक पेय इनमें नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, मट्ठा, बेल का शरबत, आम पन्ना शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। सत्तू भी बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। गर्मियों में चने या जौ का सत्तू पीना बहुत ही

0: मंद होता है, यह ऊर्जा का और ठंड का दोनों का एक स्रोत बनता है। तरबूज, खरबूजा, संतरा, पपीता, लीची जैसे पानी से भरपूर हमें फल खाने चाहिए। खीरा, ककड़ी, प्याज को अपने भोजन में हमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लौकी, तुरई, टिंडा, परवल जैसी हल्की और हरी सब्जियां हमें खाते रहना चाहिए। जी हाँ, हमें तले भुने खाने से बचना चाहिए। जैसे आजकल जो तली चीज़ें होती हैं, कचौड़ी होती है, तली भुनी चीज़ें जैसे पकौड़े होते हैं, भारी वाले भोजन से हमें बचना चाहिए। मसालेदार भोजन, ज़्यादा मिर्च या भारी मसाले पेट की गर्मी या एसिडिटी को बढ़ाते हैं। कैफीन और अल्कोहल की बात करें तो चाय, कॉफ़ी का सेवन सीमित करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे हमें बचना हो ज़रूरी है। तो एक बार फिर याद दिला दें, हाइड्रेशन और पेय पदार्थ दिन भर में पर्याप्त, कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, मट्ठा, बेल का शरबत और आम पन्ना शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। और फल जिनमें तरबूज, संतरा, पपीता, लीची जैसे पानी से भरपूर फल खाने चाहिए। खीरा, ककड़ी और प्याज को अपने भोजन में हमें शामिल करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, बढ़ती गर्मी में हमारा खान पान कैसे हो।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम झूमते तराने।

कार्यक्रम झूमते तराने सुनने वालों को संजय शर्मा का नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आपने अप्रैल फूल फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। झूमते तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। जी हाँ, कुछ बातें हम वो करते हैं जो हमें जीवन भर काम आए। अपनी सेहत को हम सर्वोच्च प्राथमिकता दें, हम हमेशा बचत पर भी ध्यान दें। हर परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कुछ नया सीखने की कसरत हमेशा करते रहना चाहिए।

झूमते तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुना, फिल्म थी आई मिलन की बेला। जी हाँ, गीतों के साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर काम आती हैं। हम अपनी ज़ुबान के हमेशा पक्के रहें, जिसके साथ वादा करें उसके साथ वादा निभाएं और हमेशा विश्वसनीय बनें।

वाजीगर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की। कार्यक्रम झूमते तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। हम रिश्तों पर बात करते हैं। रिश्तों में मजबूती के लिए हमें संवाद ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आपसी विश्वास और एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में रिश्ते मजबूत होते हैं और इनमें मिठास आती है।

देवदास फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और साथियों की। कार्यक्रम झूमते तराने आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:45 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोकरंग।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग तो सुना कर दिन आकाशवाणी हमीरपुर से अंतराल के बाद सुन दिन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति दिखा। लोक गीतों के रंग जोड़े हैं सर लोग गीतों सौगी खरे लगते सो क्योंकि सारी संस्कृति का आईना साढ़े लोक गीत। रीति रिवाज परंपरा पर बने टैमे टैमे लोग गीत सो दसते कि साड़ी संस्कृति बड़ी समृद्ध है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल ते बाद कार्यक्रम लोकरंग तुहाड़ा फिर स्वागत है। साढ़े लोक गीतों की खासियत जी असं गल कर करते हैं, समय समय के लोक गीत बने हैं, कुछ परंपरा पर हैं, कुछ साढ़े रीति रिवाजा पर हैं, कुछ साढ़े जड़े ब्याह शादियां या और कार्यक्रम होंगे जिस कने जुड़े होगी लोक गीत हैं। इतों तक कि साढ़े जड़े महीने हैं तो इन्हों पर भी लोक गीत बने हैं। ये लोक गीतों की बड़ी खासियत है कि कोई भी समा परंपरा जी है इस पर लोक गीत ना बने हो ऐसा नहीं है। साड़ी संस्कृति यही करने साड़ी संस्कृति बड़ी महान है।

ਬਾਰਾ ਮਾਸ ਗੀਤੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੀਤੇ ਸੋਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਮਤੀ ਨਮਸਕਾਰ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी।
1: देखिए, आज प्रातः 7 बजे से यह मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारा प्रथम चरण में 1293 पंचायतों में चुनाव जारी है। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफी स्टेप उठाए हैं। सभी बेल्ट बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्कैनर लगाया है, तो कोई भी बेल्ट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वो स्कैन किया गया है। स्कैन करने उसकी एक आईडी आ गई और वो जब काउंटिंग पे जाएगा तो वहाँ फिर स्कैन किया जाएगा, ताकि तय हो बेल्ट बॉक्स पोलिंग स्टेशन पे यूज हुआ है वही बेल्ट बॉक्स काउंटिंग के केंद्र पे पहुंचा है। जहाँ तक काउंटिंग का सवाल है, हर काउंटिंग सेंटर की 100% जो है वो सीसीटीवी कवरेज की जाएगी, ताकि काउंटिंग के में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और परिणाम जो है समय पर घोषित।
0: इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के अलावा बुजुर्ग मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर हिस्सा लिया और अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की।
2: नमस्कार, मेरा नाम अंबिका जम्वाल है और मैंने आज फर्स्ट टाइम

0: पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद।
1: इस बीच प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सुबह 9 बजे तक की मतदान प्रतिशतता भी सामने आ रही है। ऊना जिला के 5 ब्लॉकों की विभिन्न पंचायतों में 20% मतदान हो चुका था, जबकि कुल्लू विकास खंड में 20 और शिमला जिला के रोहड़ू विकास खंड में 17.46% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका था। इधर 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा है कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस सेवा लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
2: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बारालाचा पास, नकीला पास, तांगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
1: IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच आज शाम 7 बजे से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले को विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। IPL के इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मैच को कर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्कफेड ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्कफेड का खुला दूध 51 से बढ़कर 53 रुपये और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दाम बढ़ने से अब दूध से बनने वाले सभी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार,
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब से लेकर 12:00 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

दुर्गा माँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।

जमाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

हाल क्या है जनाब जी। हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अ वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजॉय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम देवधरा के गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद आवाज सुन दिन कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद आवाज सुन दिन कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद आओ सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए सुनते हैं एक सूचना। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के लिए अग्निवीर, क्लर्क, स्टोरकीपर, सामान्य कार्य, तकनीकी और ट्रेडमैन पदों की अंतिम मेरिट सूची 25 मई 2026 को घोषित कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेजीकरण और पूर्व प्रेषण औपचारिकताओं के लिए 27 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे तक हमीरपुर सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर www.joinindianarmy.nic.in पर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमीरपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में टेलीफोन नंबर 01972222214 पर या ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और सैनिक भाइयों, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

तेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा।

0: ओ धूम मचाते गाते निकलो निकलो आज जिधर से, खुशियों की मद मस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे, खुशियों की मद मस्त घटा है आज तो खुल कर बरसे।
1: सैनिक भाइयों से गीत के साथ अब आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। एक बजने को हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: हर रोज दो सखियां 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं, और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियां भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियां ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
3: सखी सहेली,
4: यह है विविध भारती। सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुरीला सफ़र। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द।

ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नज़र में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना?

शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे को एक दूसरे का अभिवादन किया जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां हैं। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेम युगल दिल को सहला देते हैं तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कम कपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ,

एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं है, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा, कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफ़र में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देख कर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को

बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है। कभी कभी ये एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं। ताजगी और सुकून से भर देते हैं, बिल्कुल। और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, मेंटली इमोशनली। तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफ़र में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही ख़ास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुज़ुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहाँ आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में, जो गीत हमने आपको सुनवाया, उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम। तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन हैं, ये ज़रूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देख कर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूँगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं, साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूज़िक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिख कर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊँचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ साएं साएं करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात काली ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना? साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

0: Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
5: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के साथ साथ डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चला। कुछ पंचायतों में अभी भी मतदान जारी है। ये वो पंचायतें हैं जहां लोग वोट डालने के लिए कतारों में लगे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 100% मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कवरेज से जोड़ा है। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्रदराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हमीरपुर जिला की टिक्करी मिन्हासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव से 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस बीच कुल्लू जिला में दोपहर बाद 2 बजे तक 60.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस दौरान आनी विकासखंड में लगभग 56%, बंजार में 58%, भुंतर और कुल्लू विकासखंडों में 61%, नग्गर में 60% और निरमंड में 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंडी और हमीरपुर जिलों में 1 बजे तक 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। शिमला जिला की अधिकांश पंचायतों में भी भारी मतदान की सूचना है। रोहडू और कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों के मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाता कतारों में वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया। ऊना जिला में 1 बजे तक 69.13% महिलाओं और 62.14% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। जिले में भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में मतदाता लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लाहौल स्पीति जिला में भी भारी मतदान की सूचना है। यहां 11 बजे तक लगभग 32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी पदोन्नति संबंधी अधिसूचना आज कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। लेह लद्दाख को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे बस रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुंचेगी।
1: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बालालाचा पास, नकीला पास, तंगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।

0: लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला लोसर ग्राम्फू चंद्रताल सड़क मार्ग हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि फिलहाल इस मार्ग को 4x4 हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है सिरमौर जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है सतीश शर्मा, वाचक स्वर पूनम शर्मा का।
0: प्रदेश सहित सिरमौर जिले में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की हलचल जारी है। जिले में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बार पंचायत चुनावों के बीच 28 पंचायतों ने अनोखी मिसाल कायम की है। जिले की कुल 273 पंचायतों में से 28 पंचायतें ऐसी हैं जहां प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इन पंचायतों में केवल एक एक प्रत्याशी के नामांकन होने के चलते चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इन पंचायतों को प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं जिन पंचायतों में बीडीसी सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं उन्हें 30 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। ऐसे में सिरमौर जिले को कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है। जिला सिरमौर के अंतर्गत शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शाटी पाशी का चौंतरा और ग्राम पंचायत टटियाना में एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंचायत प्रतिनिधियों का चयन सर्वसम्मति से पर्ची डालकर लक्की ड्रॉ के माध्यम से किया गया। ये पूरी प्रक्रिया महासु महाराज मंदिर टटियाना के प्रांगण में आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों की मौजूदगी में महासु महाराज को साक्षी मानकर चयन सम्पन्न हुआ। गांव में ये अनूठी व्यवस्था वर्ष 2020 में शुरू की गई थी, जिसके तहत गांव के 4 बेड़ों यानी परिवार समूहों से नामित प्रतिनिधियों के नाम पर्चियों में डालकर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। ये लगातार दूसरी बार है जब इसी प्रक्रिया के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है। बीते दिनों श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की पहली थोक फल व सब्जी मंडी का संचालन नौराधार में शुरू हो गया है। मंडी में सब्जियों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सोलन, दिल्ली और अन्य दूरदराज की मंडियों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे उनके परिवहन खर्च में कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन बस स्टैंड परिसर में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को एकांत और सुविधा प्रदान करने के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम खोला गया है। ये सुविधा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। ये सुविधा लगभग एक महीने पहले जारी सरकारी निर्देशों के बाद प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन माताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है जिन्हें छोटे बच्चों को यात्रा के दौरान स्तनपान करवाना होता है। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन की प्रमुख मुस्लिम संस्था अंजुमन इस्लामिया ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था ने इस संबंध में उपमंडलाधिकारी नाहन के माध्यम से सरकार को एक मांग पत्र भेजा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे गाय को राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखते हैं और इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अंजुमन इस्लामिया के प्रधान गुल मनव्वर अहमद की ओर से सौंपे गए इस पत्र में मांग की गई है कि देश भर में चल रहे बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। सिरमौर जिला के नौराधार तहसील के दूरदराज गांव नानड़ी के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल शर्मा को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में वृक्ष सुधार व आनुवंशिक संसाधन विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। डॉक्टर जयपाल शर्मा पिछले 17 वर्षों से वानिकी व कृषि वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें अल्पावधि वृक्ष प्रजातियों, विशेष रूप से स्थानीय भाषा में बेस और ब्यूंस कहलाने वाले विलो हाइब्रिड के सुधार, मूल्यांकन और विकास में विशेष विशेषज्ञता प्राप्त है। हिमाचल के निचले इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही घुमंतू भेड़पालकों ने एक बार फिर पहाड़ों की ओर अपना पारंपरिक सफर शुरू कर दिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गद्दी समुदाय के

0: तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर
1: दी
0: जरूर दें, उसको
1: बिल्कुल
0: देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल। ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी
0: जी
1: है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है? आत्म
0: आत्म
1: सुधार।
0: सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी
1: हाँ,
0: कर
1: अपने
0: सकते
1: घर में
0: हैं।
1: हम पानी और बिजली को बचाएं। कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से
0: जी
1: लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना
0: जी
1: दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर दिन भर एसी में हम बैठे
0: जी
1: रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम
0: बिल्कुल
1: पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार
0: जी
1: चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी
0: बिल्कुल
1: लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपनाना सीखें। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं।
0: जी
1: और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो ज़रूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूँ, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा। वो
1: बिल्कुल
0: आपको, आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की
1: बिल्कुल
0: सोचिए।
1: कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है।
0: जी
1: यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से
0: जी
1: अच्छा व्यवहार करेगा।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: वही
0: है
1: बात हमारे सामने
0: जी।
1: होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय। रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें। स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें। अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें,
0: बहुत
1: है
0: सुंदर
1: ना?
0: सी बात
1: हाँ।
0: लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है,
0: जी
1: फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत
1: स्वागत है।
0: है।
1: और देखिए, एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियाँ हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम 1 घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल, तो सही कहा। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो
1: बच्चे,
0: कि बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं।
0: हाँ।
1: मम्मी तुमने 1 घंटे चलाया, मैं भी चलाऊंगा।
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात,
0: क्या
1: है,
0: बात
1: बहुत
0: है,
1: सुंदर बात लिखी
0: बिल्कुल।
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना
1: हाँ
0: सटीक है ना मंदाकिनी जी कि
1: बिल्कुल
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना। तो ये
1: बिल्कुल
0: सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात, है ना।
1: हाँ, और ये
0: तो
1: ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जिस
0: जी
1: खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती
0: बिल्कुल। तो
1: है ना।
0: चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी
1: हाँ
0: सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर हैं। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला हैं, और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं।
0: जी, और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं। हाँ
1: बिल्कुल,
0: जी
1: उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली, और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
0: जी और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो
0: जी
1: राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की, और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाने का काम भी किया।
0: जी और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉप क्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था,
0: और
1: लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी
0: जी
1: और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया
0: बिल्कुल।
1: भी।
0: और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड्स 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं।
2: अमर गीतों की रचयिता
1: कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे ही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं, वो ऐसा
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत
1: बिल्कुल,
0: बात
1: वो
0: है।
1: कान की कच्ची है भी नहीं।
0: हाँ
1: और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए, वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते हैं।
0: विश्वास कर लेता
1: तो
0: है। तो
1: ऐसा
0: ऐसे,
1: नहीं होना
0: हाँ ऐसे
1: चाहिए।
0: कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं
1: बिल्कुल
0: कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है।
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए ना, वो
0: हाँ
1: कैसा है आप अपनी नज़रों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना।
0: सबसे बड़ी
1: कोई
0: बात,
1: दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी है, तो क्यों आप उसके उस पर
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: जी बिल्कुल
0: कि
1: सही
0: आप
1: बात,
0: खुद अच्छे बने, है ना, खरा
1: बिल्कुल
0: सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब
1: बिल्कुल
0: आप परखते हैं तो आपकी नज़रों में वो पारखीपना होना चाहिए कि
1: बिल्कुल
0: आप उसको परख लें अपनी नज़रों से। दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: पड़ता
1: सबसे
0: है।
1: पहले तो
0: हाँ
1: इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी,
0: बिल्कुल,
1: कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी
0: डिगा
1: बातों
0: नहीं
1: में
0: सकता।
1: डिगा नहीं सकते, जिसे
0: हाँ
1: कहते वो
0: मतलब
1: होना
0: अपने
1: चाहिए
0: किरदार को हमें मजबूत बनाना
1: जी।
0: चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला,
1: उथल
0: इधर
1: पुथल
0: इधर ढुल गए उधर ढुल
1: नहीं,
0: गए,
1: नहीं थाली
0: आपने
1: का
0: कहा
1: बैंगन जिसे कहते वैसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: उधर
1: चाहिए
0: उसकी बात सुन ली, उधर उसकी
1: जी
0: बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो
1: जी
0: देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं,
1: बिल्कुल
0: ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है,
1: जी
0: ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और
1: जी
0: ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता,
1: जी
0: तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्ति को धूमिल कर दे व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए।
0: बहुत
1: हमारी
0: अच्छा,
1: सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी ज़रूरत की बात गोपनीयता ख़राब कर देते हैं, यानी आपकी ज़रूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
0: मतलब
1: ऐसे लोग जो होते
0: गोपनीयता जो बातों की हाँ, होती है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना अपना मतलब पाने के लिए, मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे को, दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजें। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुन
1: अच्छा
0: करके।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहाँ ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रख दो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीज़ें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। वो बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी वही लोग होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्मासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी। कोई नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधू पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था। लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है। यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत करवाते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीनशेड से ढका था जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहाँ पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीज़ें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज़ प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मज़ा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत चूहलबाजी टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
0: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: शादियां होटल में हो गई हैं, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद आते
0: हैं। चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर बाकी संदेश लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे
0: अरे
1: याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो
0: कैसे
1: चुके हैं।
0: हुए
1: बाद में
0: हैं?
1: जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: सही
1: सही
0: कहा।
1: बात है।
0: हाँ, मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा, यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी। एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए। रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहाँ आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौखट में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बराती रात में रुकते भी नहीं हैं। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है, पी लो पी लो तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते जा रहे गर्म पानी समझ के ही पी लो तो बड़ी चीज़ें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक अलग
0: मजा था।
1: मज़ा था।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोग

0: के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
1: अब तो फॉर्मेलिटी ही
0: जी
1: निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
0: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी जी,
1: हाँ,
0: तो वो तो किसी और का बगीचा है।
1: हाँ,
0: अब आम लगे हैं,
1: हाँ,
0: अब बराती लगे तोड़ने में,
1: हाँ, हाँ,
0: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
1: रोचक किस्से
0: रोचक
1: जनवासी
0: किस्से
1: की
0: हो
1: दुनिया
0: जाते
1: से
0: थे।
1: जुड़े हुए हैं। बिल्कुल,
0: जी
1: आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।
0: जी
1: और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: शबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी, आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है, है ना? वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक कंपोज़र म्यूज़िक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफ़िकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफ़ी है,
0: और इन रागों में
1: वाद्य वृंद बनाना, वो भी उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता
1: है, 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे
0: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो,
1: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूज़िक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूज़िक में हैं, एक म्यूज़िक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में।
0: अच्छा।
1: बचपन ऐसा होता है ना
0: हाँ।
1: कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो
1: हाँ
0: जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: हाँ अभी आर्टिस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
0: जी,
1: और भी बदमाश
0: और
1: होता
0: भी।
1: था।
0: तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में काफी।
0: शर्मा रहे, बता
1: हाँ थोड़ा सा
0: रहे
1: शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते
0: थे। बगीचों से आम चुराए, चोरी से
1: बहुत
0: फिल्में
1: चुराए,
0: देखी
1: बहुत
0: है।
1: चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
0: ओहो हो,
1: को भी थोड़ा परेशान किया है।
0: थोड़ा
1: हाँ इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता
0: लेकिन
1: दूं,
0: किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
1: आपने
0: खतरनाक
1: पकड़
0: वाला
1: लिए,
0: किया
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों,
0: होगा।
1: रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी
1: मैं
0: जी
1: बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर।

0: अच्छा
1: इसको कर्म बोलते हैं।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम में। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको,

0: सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे
1: कहीं और पहुंच
0: नहीं
1: गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रहीं, फिर खेलने चले गए,
1: जी
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं बचपन में।
1: हाँ।
0: और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या
0: तो,
1: हाल
0: बाप
1: होता?
0: रे दुनिया अलग और मैं
1: कितना
0: अलग।
1: सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था,
1: जी
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
1: जी ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।
2: रंगी पर

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है,
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: ये मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो, गजब
0: ही वॉज ए मिलिट्री गाय
1: जी
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और
1: जी
0: इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली।
0: वो पार्ट थे उसके,
1: ओके
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के। और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको उसने छुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, ही सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने।
1: फौज में होते हुए भी।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह,
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी,
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में,
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है,
1: जी
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ माउथ होल के पास,
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से,
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और
1: जी
0: यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं,
1: जी,
0: पंचम हम
1: बिल्कुल
0: होल यूज नहीं
1: यूज
0: करते।
1: नहीं करते हैं।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: अद्भुत बांसुरी,
1: अद्भुत
0: उनका आशीर्वाद
1: बांसुरी।
0: है।
1: जी
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा
1: वाह।
0: मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था, 4 बजे हम तीनों को उठाते थे वो, हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था,
1: जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के शुरू से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा ब मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है।

0: नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर, वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: नहीं, फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह,
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से, और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, वो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज़ से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से, आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक,
1: ओ हो, तो सारी रात जागना है
0: पूरी सारी लाख जाग गए,
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल थे। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते
0: अनुशासन से,
1: हुए,
0: रियाज करते
1: अनुशासन
0: हुए
1: में,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूँ यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया,
1: जी
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी,
1: जी
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी,
1: जी
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का, आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल।
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है
1: बिल्कुल।
0: ये, और मैं एक ही हैं। सो मैं इस जन्म में

0: आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी,
0: जी
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुनें आपकी पसंद
0: जी
1: का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का कि
1: जी
0: ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी,
1: जी जी
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे,
1: जी जी जी
0: इसको ऐसे बजाते हैं।
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी, आपने
1: हाँ
0: देखी होगी ऐसे
1: और
0: शहनाई की
1: ये
0: तरह बजाते हैं,
1: जी,
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी,
1: जी
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं, तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी,
1: हमेशा।
0: इसको ऐसे तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी,
1: हाँ
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का होल है
1: जी
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के।
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपने नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग।
1: जी
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें दो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का एक नोट
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल है
0: ठीक है
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है
0: हमने तो बचपन से देखा है,
1: जी।
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
1: आप माध्यम है
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान हैं,
1: जी।
0: आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, मैं जो
1: जी
0: भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो
0: इसका
1: आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी, तो आप
0: ये
1: अपनी
0: मैं लाया
1: कृष्णा
0: इसलिए
1: बांसुरी
0: हूँ,
1: बजाइए
0: मैं
1: जी,
0: लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर
1: साथ
0: मेरे हाँ
1: चले।
0: मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात
0: हाँ
1: है।
0: ये हम मेरे फ्लूट किट में रहता है ये।
1: जी।
0: अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था जो तीव्र माँ का ये है,
1: जी
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल
1: हाँ है
0: है ना,
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का,
1: जी।
0: पिताजी का भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। अब
1: जी
0: हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं बेटे भी हैं शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं समझ में नहीं आता है, तो
1: बिल्कुल सही
0: वो
1: है
0: देखना पड़ता है।
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में
1: हाँ
0: दादाजी के साथ, राग दुर्गा मैं आपको सुनाता
1: ठीक है, और उसके
0: हूँ,
1: बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं
0: मैं
1: फिर
0: फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।
0: आपको।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटी कोटी प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी,
1: जी जी जी
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने,
1: अच्छा
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है

वाह वाह वाह वाह, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत कमाल का किया आपने। ये गाना सुनते हैं।

अर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना,

0: हाँ वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है, खाता
0: शिशु
1: रहता है,
0: होता है जब वो
1: शिशु होता है वो। तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में
1: हाँ, और वही
0: परफॉर्मेंस।
1: राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा। अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ
0: वो
1: मैंने,
0: उम्र भी बहुत छोटी थी
1: हाँ काफ़ी छोटी थी। फिर
0: जब
1: उसके
0: आप।
1: बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे,
1: हाँ
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक
1: सर,
0: गजब।
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी,
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं उनके
0: जब
1: सवाल भी
0: पीने
1: वैसे ही।
0: जाई
1: जी
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आई मीन रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक
0: बिल्कुल
1: पारे, गुजिया, घर के में मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्यौहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज़्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी।
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता था, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
0: जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता,
0: हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना,
0: जी
1: और तब
0: जी
1: का सुना हुआ है,
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है एक वो,
0: हुली आई रे कन्हाई।
1: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
0: जी
1: वैसा था। तो फिर ऐ दिले नादान,
0: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
1: हाँ,
0: फिल्म
1: रजिया
0: का गाना,
1: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
0: बिल्कुल।
1: ओ हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम,
0: जी
1: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
0: अरे बाबा,
1: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
0: अच्छा,
1: बहुत शौक।
0: क्या बात है।
1: एंड आई वाज

0: द बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम.
1: तो आप
0: यस,
1: बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था, ऑलराउंडर
1: अच्छा,
0: ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर.
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी,
0: नहीं.
1: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में.
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं.
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया कहाँ.
1: हाँ,
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले
1: बस
0: ही गए
1: जुनून
0: बस.
1: के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी. और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल, वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं. तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में. फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो मजाक.
1: ये
0: हाँ,
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: महंगी पड़ती थी.
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का
0: पर
1: सवाल है।
0: आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर
1: फिर
0: वापस,
1: वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों.
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते,
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते,
0: मजा
1: आकाशवाणी के गलियारों से
0: आता
1: जुड़ी यादें बताई।
0: है.
1: पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: हाँ, वहां पे
1: उनके
0: क्या,
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था.
1: अच्छा,
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ,
0: जब हम उनके साथ जाते थे, तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त. तो उनके साथ जाने का एक अलग मज़ा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का. तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज़्यादातर. दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा. अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी,
0: उस वक्त पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए, तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है. तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का. तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए. और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें. आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें.
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर, कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ, तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मज़ा तो आता था, वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीज़ें समझ आती थी. बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाज़िर जवाब भी समझ में आती थी.
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है. पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना. और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे. पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो.
1: जी
0: तो पूरा एक हमारा चक्कर
1: चक्कर लगता है।
0: तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए,
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में। तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत था।
0: वही था

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: श्रोताओं, भी आप विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं, अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने

0: तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार के उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देशभर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, भी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनिए आज रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद सुनिए पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। 5:30 पर सुनिए युव मंच कार्यक्रम। 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिए सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम और 6:30 पर सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम। 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम और 7:25 पर सुनिए रौनका ग्रैंडिया कार्यक्रम। 7:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:00 सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। 9:15 पर सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। साहित्य जगत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर सुनिए रोमांटिक फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें और रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, अभी आप आज रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 5:06 हुए। अब सुनिए पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: राम का नाम ही वो सच है जो झूठ के संसार में भी अटल खड़ा है, जो सुख में भगवान को नहीं भूलता दुख उसके पास आने से भी डरता है। धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।

ह्यूमन सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के ह्यूमंस कार्यक्रम में स्वागत है। युवा साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडी दोस्त पंकज कुमार। आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि आईटी और सॉफ्टवेयर नहीं, अब स्पेस टेक्नोलॉजी है नया भविष्य, और जाने कैसे करेगा ये युवाओं की मदद। और साथ ही हम आपसे साझा करेंगे जानकारी कि कैसे इंटरनेट और गैजेट्स बदल रहे हैं युवाओं की दुनिया। तो देखिए युवाओं, इसरो की लगातार सफलता के बाद भारत में स्पेस टेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। निजी स्टार्टअप्स के साथ युवाओं के लिए रॉकेट, सैटेलाइट, एआई और डाटा साइंस में शानदार करियर मौके खुल रहे हैं। जानिए कैसे शुरू करें और कितनी सैलरी मिलती है। पहले युवा आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ओर जो है भागते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। इसरो की लगातार सफलताओं ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को नया भविष्य बना दिया है। चंद्रयान, गगनयान, निसार और स्पेडेक्स जैसी जो है मिशंस के बाद अब निजी स्पेस स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोमांचक करियर के ढेरों मौके जो है खुल गए हैं। अच्छी जो है सैलरी इनको मिलती है, और नई टेक्नोलॉजी और देश की जो है सेवा का मौका दोनों जो है मिलते हैं। इसरो की सफलताएं और स्पेस सेक्टर का बूम भी इसे कहा जाता है। देखिए, पिछले साल यानी 2025 में इसरो ने कई बड़े मील के पत्थर पार किए, जिसमें निसार सैटेलाइट नासा के साथ जो है ये कार्य किया गया था। उसके बाद में स्पेडेक्स मिशन में स्पेस डॉटिंग, सोवा लॉन्च और गगनयान की तैयारी जैसी उपलब्धियाँ देखकर पूरी दुनिया प्रभावित हुई। इन सफलताओं ने सरकार को स्पेस सेक्टर को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन स्पेस और NSIL जैसे संगठनों ने प्राइवेट कंपनियों को रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विसेज बनाने की अनुमति दे दी। नतीजा, आज भारत में 225 से ज़्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप जो है काम कर रहे हैं, और स्काई रूट, एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, ध्रुवा स्पेस, पिक्सल और एस्ट्रोम जैसी कंपनियां रॉकेट, सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है कार्य कर रही हैं, और 2026 में ये कंपनियां और तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। युवाओं के लिए शानदार करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहां पर हैं। स्पेस टेक में सिर्फ रॉकेट साइंस पढ़ने वाले ही नहीं, बल्कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, AI, डाटा साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र को भी भरपूर मौके मिल रहे हैं। रॉकेट और सैटेलाइट डिज़ाइन, प्रमोशनल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का कार्य करता है, और जहां डेटा एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सैटेलाइट से आने वाले डेटा का विश्लेषण करके कृषि, मौसम और आपदा प्रबंधन में मदद की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें नए रॉकेट और कंपोनेंट्स जो है बनाने का काम किया जाता है। और वहीं सॉफ्टवेयर और AI की अगर हम बात करें तो इसमें ऑटोनॉमस सिस्टम और मिशन कंट्रोल पे कार्य किया जाता है। ये कंपनियां युवाओं को अच्छी सैलरी शुरुआत में 8 से 15 लाख रुपए सालाना जो है दे सकती हैं, और तेज प्रमोशन का मौका दे रही हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में अब स्पेस जो है हब बना रहे हैं। और आपको कैसे जो है शुरू करनी है इसके लिए, तो आपको इसरो के जो है स्टार प्रोग्राम, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में जो है ट्रेनिंग स्कीम में आप शामिल हो सकते हैं, और एरोस्पेस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे मॉडल रॉकेट या क्यूबसेट प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि करियर की सुनहरी जो है राह है। इसरो की तर्ज पर चल रहे स्टार्टअप भारत को वैश्विक स्पेस पावर बनाने जा रहे हैं। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो स्पेस सेक्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 2026 में स्पेस इंडस्ट्री और तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो चलिए, अगर आपको आगे कार्यक्रम में जानकारी देंगे कि भारतीय युवाओं को कैसे प्रभावित कर रही है टेक्नोलॉजी, और जानेंगे इंटरनेट और गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं इनकी दुनिया। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताएं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के युवमंच कार्यक्रम में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भारतीय युवाओं को कैसे प्रभावित कर रही है टेक्नोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कि इंटरनेट और गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं हमारे युवाओं की दुनिया। तो बढ़ते समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट गैजेट्स जैसी सुविधाएँ देश के कोने कोने तक पहुँच पा रही हैं। इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश के युवाओं पर पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बढ़ते समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी हुई है और इंटरनेट गैजेट्स जैसी सुविधाएं देश के कोने कोने तक जो है पहुंच पा रही हैं। इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश के युवाओं पर पड़ा है। बदलते समय के साथ इंटरनेट भी बदल गया है। एक समय था जब 2GB पर हम जो है 2G जो है स्पीड पर हम काम करते थे, लेकिन कुछ समय में हम 5G के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया में भी कदम रख लेंगे। अभी इंटरनेट का एक्सेस युवाओं के लिए भी आसान है। इसने युवाओं के जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। अब हर तरह की जानकारी इसके केवल एक क्लिक की दूरी पर है। बस एक क्लिक और किसी भी जानकारी को वो जो है आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक गलत प्रभाव भी है, क्योंकि कभी कभी ये इंटरनेट का गलत इस्तेमाल इनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। आजकल कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें डार्क वेब में आपके पर्सनल डाटा को लीक करने की सूचना आती है और ज़्यादातर युवा इसके शिकार भी हो रहे हैं। तो देखिए, स्मार्टफोन और गैजेट का युवाओं पर प्रभाव इस तरह से है। और इसके साथ ही महामारी के बाद से, अगर हम स्मार्टफोन की अगर हम बात करें और गैजेट्स की बात करें, तो महामारी के बाद से हमारे ज़्यादातर काम घर से होने लगे हैं और यहाँ तक स्कूल और कॉलेज भी जो है ऑनलाइन हो गए थे। ऐसे में स्मार्टफोन और गैजेट्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया। इसी दौरान स्मार्टफोन और गैजेट निर्माता कंपनियों ने भी किफ़ायती और मीडियम प्राइस जो है सेगमेंट में जो है स्मार्टफोन, यानी कि 10,000 से 25,000 तक का जो है स्मार्टफोन जो है लाने लगी। इसने युवाओं की जानकारी को बढ़ाने और पढ़ाई करना और आसान बना दिया। लेकिन इसके साथ ही फ़ोन का अधिक इस्तेमाल युवाओं में बढ़ता जा रहा है और उन्हें शारीरिक रूप से प्रभावित करने के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, सोशल मीडिया का भी जो है बढ़ता चलन इसमें देखा गया। युवाओं में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अलग क्रेज़ है। आपको इंस्टाग्राम पर 2 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चों की कई प्रोफाइल मिल जाएगी। हालाँकि ये प्लेटफॉर्म बहुत से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी देते हैं। साथ ही इनकी मदद से आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर मिल रही कुछ गलत सूचनाएं लोगों को गुमराह भी करती हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और सोशल मीडिया साइट्स इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ध्यान रखते हैं और समय समय पर गलत सूचना पहुँचाने वाले अकाउंट पर

श्रोतों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के युवमंच कार्यक्रम में। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि युवाओं के लिए शीर्ष 10 उभरती प्रौद्योगिकियां और भविष्य को जो आकार देंगी। तो देखिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक भी जो है आगे आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद में ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटर भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही AR और VR तकनीकें भी इसमें शामिल हैं, 5G तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी। तो देखिए, सभी जो हैं टेक्नोलॉजीज जो हैं आने वाले समय में युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। युवा चाहते हैं तो इन सभी तकनीकों में से किसी भी तकनीक में अपना जो है कौशल विकसित कर सकते हैं और आने वाले समय में इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो युवा साथियों, उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में साझा की गई जानकारी आपके काम आएगी। इजाज़त दीजिए अपने रेडी दोस्त पंकज कुमार को।

श्रोतों, एक सूचना सुनिए। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के लिए अग्निवीर, क्लर्क, स्टोर कीपर, सामान्य कार्य, तकनीकी और ट्रेडमैन पदों की अंतिम मेरिट सूची 25 मई 2026 को घोषित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेजीकरण और पूर्व प्रेषण औपचारिकताओं के लिए 27 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे तक हमीरपुर सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार

0: आधारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमीरपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में टेलीफोन नंबर 01972222214 या ईमेल veerbhoomi.01@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

श्रोताओं, आज का किसानवाणी कार्यक्रम विशेष विषय पर रहेगा, जिसमें विषय रहेगा खुम की खेती में वैज्ञानिक सिफारिशें। विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे डॉक्टर आर एस जरियाल, और इनसे बातचीत करेंगे राजीव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत आज प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और कई स्थानों पर नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी रोकने और इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 100% मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा है। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्र दराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला की घुमारवीं विकास खंड की सेऊ ग्राम पंचायत के पिंक बूथ पर प्रदेश की सबसे उम्र दराज मतदाता 113 वर्षीय मंगलू देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह

0: शिमला ज़िला की ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी के करोली गांव की 100 वर्षीय रामपति और हमीरपुर ज़िला की टिक्करी मिन्हासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव की 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई ग्राम पंचायतों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इस बीच कुल्लू जिला में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। जिला के नग्गर विकास खंड में 85.18% और आनी विकास खंड में 82% मतदाताओं ने वोट डाले। सिरमौर जिला में 75.52% जबकि सोलन जिला में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिला में 76.28% और बिलासपुर जिला में 75.61% मतदान हुआ। बिलासपुर जिला के झंडुता उपमंडल की भड़ोली कलां पंचायत के वार्ड नंबर 1 भड़ोली खुर्द के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। आज हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा भुगतान प्रणाली में बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर विभाग द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार होगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। समिति ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और प्रभावित लोगों की आवाज बुलंद करने की मांग की है ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।
1: जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे, वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिपोर्ट बना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम पेड़ आए। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है, ना तो उसके ऊपर कोई FIR हुई है। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम जो है उनका जो एक हक है वो मिल सके।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 6:06 हुए हैं। आप सुनिए सफल सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। श्रोतों, स्वागत है आप सबका आज के इस सफल सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके रेडी दोस्त अजय कुमार। तो शुरुआत करते हैं आज के सुनहरी सफर की इस गीत के साथ, कि तुम्हारे बिना कुछ कमी सी लगती है, खालीपन सा है। हाँ, यादें साथ हैं तुम्हारी और हमेशा रहेंगी, इन हवाओं में घुली तुम्हारी आवाज़ हमेशा मेरे दिल में गुनगुनाती रहेगी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

वो रोज़ाना मेरे हाथों का सफ़र तेरे हाथों की तरफ कितना खास होता है ना, वो एहसास कुछ ना कहना, हाथों का हाथों में होना और चेहरे पर बस एक मुस्कान होना।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैंने कहा था ना कि हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, बस कुछ पलों के लिए साथ निभाने आया हूं, फिर चला जाऊंगा, पर तुम्हारी उस रब से की हुई फरियाद पूरी कर जाऊंगा।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतों, भी आप सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम। श्रोतों, आज का किसानवाणी कार्यक्रम का विषय रहेगा खुम की खेती में वैज्ञानिक सिफारिशें। हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS जरियाल, और इनसे चर्चा करेंगे राजीव।

0: किसान वाणी तुहांदे घर द्वार सुनने वाली जितनी भी आंदे नियमित श्रोता है किसान कने बागवान भाई बहन है तिना दा इस कार्यक्रम च स्वागत करदे और आंदे किसान भाई आंदे श्रोता सुने करदे आकाशवाणी हमीरपुर दा विशेष कार्यक्रम। और अज का ये कार्यक्रम है आंदे किसान कने बागवान भाई बहन जो जो असे अहां गलाना चाहते कि जितने भी आंदे कार्य है तिसते बारे च अहां जे असे गलबात करदे। और जियां जे तुहां जो पता है कि अज जे असे अहां गलबात करनी खुम्भ के बारे से जिस जो है मशरूब भी बोलते इसकी खेती अहम किस तरीके ने कर सकते क्या क्या इस वैज्ञानिक सिफारिशें हैं इस बारे से गल करनी और इस बारे से गलबात करने वास्ते आज स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जरियाल जी और तुहां औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेहरी से जी ऐसे कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब सब तो पहले तुहां दा इस कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। जियां जी अहां गल करना चाहते अपने जितने भी बेरोजगारी युवा भाई बहन है यहाँ के किसान बागवान भाई बहन है क्योंकि अजकल जो असे देखा जाता कि अहां अपनी पारंपरिक दे खेती दे करने करने कुछ ही केड़ा भी व्यवसाय करने शुरू कर दे जिससे जो अहां जो थोड़ा लाभ मिले थोड़ी अहां की आर्थिकी अच्छी हो तो अहां के बहुत सारे जेड़े किसान बागवान भाई बहन है अहां के कोई जेड़े बेरोजगारी युवा भाई बहन है जी इस कार्य जो करना चाहते तो सब तो पहले अहां तुहां ते जानना चाहते कि क्या इस स्कोप है और आंदे जितने किसान भाई है से किस तरीके ने मशरूम की खेती जो जी ऐसे शुरू कर सकते और ये कितने प्रकार दी उन्दी मशरूम की खेती।
1: अच्छा जी, देखिए इस

0: अलग प्रकार की मशरूम्स होती हैं, जैसे आप अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आप बटर मशरूम उगा सकते हैं,
1: जी
0: फिर आप जो डिंगरी मशरूम है, वाइस्टर जिसको कहा जाता है, उसको उगा सकते हैं, फिर आपकी एक मिल्की मशरूम जो होती है जिसको हम कैरोसाई बोलते हैं, उसकी खेती भी आप कर सकते हैं।
1: जी
0: और मशरूम उत्पादन जो है एक ऐसा उत्पादन है जिसमें जो है, जैसे आपने बात की कि जो आपके बेरोजगार जो भाई बहन है
1: जी जी
0: वो इसको जो है वो अपने लिए काफ़ी अच्छा एक व्यवसाय हो सकता है अगर वो व्यावहारिक तौर पे जो है वो इसकी खेती अपनाएं। तो मशरूम एक ऐसी फसल है जिसमें जो आप 10 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप 30 रुपये जो है वो आपको 2 महीने के अंदर जो है वो आप कमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जितना आप करना चाहें उस हिसाब से जो प्रॉफिट जो है वेरी करेगा।
1: बिल्कुल जी। तो कहने का अभिप्राय है डॉक्टर साहब, तो वहाँ जैसे कि काफ़ी वेराइटीज़ रहती हैं, मिल्की मशरूम दी गल कीती है, बटर
0: हाँ जी,
1: मशरूम
0: देखिए
1: दी गल कीती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ साल भर ये फसल ले सकते?
0: अगर आप चाहें तो साल भर भी मशरूम की खेती की जा सकती है, जैसे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं तो उसमें आप सितंबर के बाद जो बटर मशरूम ले सकते हैं।
1: अच्छा जी
0: वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कोई आपको कंडीशंस मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी भी।
1: जी जी जी
0: अब मशरूम का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मशरूम की खेती थोड़ी सी तापमान से प्रभावित रहती
1: बिल्कुल
0: है,
1: जी।
0: क्योंकि ये अंदर फसल उगाई जाती है, तो अगर आप सितंबर के बाद अगर बटन लेना चाहते हैं तो आप उसकी खेती कर सकते हैं। साइड बाय साइड जो है वो जो जैसे आपकी ऑयस्टर मशरूम की कुछ एक हमारे पास स्ट्रेन्स हैं जो ठंडी जलवायु में भी चलती हैं, जैसे सितंबर के बाद भी आप उगा सकते हैं और अप टू अभी तक हमारे पास भी अभी तक उसकी फसल चल रही है। जैसे कुछ ऐसी इसकी वैरायटी समझ सकते हैं आप, या स्ट्रेन्स हम बोलते हैं, तो ये कुछ गर्म वाली भी हैं, जैसे
1: अच्छा
0: मौसम गर्म हो जाता है तब भी आप जो है उसको लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप चाहें तो साल भर जो है इसकी खेती कर सकते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: थोड़ा सा बीच में आपका गैप पड़ेगा, जैसे जुलाई या जून, मिड जून के बाद जो है वो अगस्त तक जो है उस समय आप थोड़ा सा ना
1: अच्छा
0: करें,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: उस
1: जी
0: टाइम बारिशें काफ़ी होती हैं तो उसमें बीमारियां आने के काफ़ी स्कोप रहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इस तरह
1: तो
0: से की जा सकती है जी।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जियाँ जे 19 टाइम जो ऐसे हाँ मई का महीना चलिया, और
0: हाँ
1: मई
0: जी,
1: के महीने से जो ऐसे हाँ मेरे ख्याल से बट अपना खुम्ब जो ऐसे
0: वाइस्टर मशरूम जो है
1: डिंगरी
0: वो
1: मशरूम है ना जी?
0: डिंगरी
1: जी
0: मशरूम
1: जी
0: जो है
1: जी
0: वो अभी भी कुछ किसान जो है अभी भी उगा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे भी आज तक हमारी फसल चली हुई है,
1: जी जी जी जी
0: अभी चलती रहेगी, और इसमें थोड़ी सी सावधानियां होती हैं वो फिर आपको बता देंगे
1: बिल्कुल।
0: जैसे।
1: तो डॉक्टर साहब मतलब क्या जरूरत है, क्या जरूरी है हम वास्ते कि अगर हम मशरूम की खेती करना चाहते, मान लिया कि हमारे युवा भाई बहन या हमारे किसान भाई चाहते कि 19 टाइम जैसे है ढिंगरी मशरूम का उत्पादन करिए,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हाँ जो क्या क्या इस काम करना चाहिए, किस तरीके ने हाँ जो मदद मिल सकती, कि यहाँ इसको शुरू कर सकते?
0: देखिए इसमें डिंगरी मशरूम का ऐसा है ना कि हम भी जैसे हमारे से कोई पूछता है तो हम सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि आप सबसे पहले डिंगरी मशरूम ही लगाएं।
1: अच्छा
0: क्यों लगाएं? क्योंकि इसमें जो है वो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं है,
1: ठीक है
0: और
1: जी
0: ये एक ऐसी फसल है जिसमें कोई तापमान का ज़्यादा रोल नहीं रहता भी है। वैसे तो है अलग अलग, में जैसे मैंने कहा कि सितंबर से लेके आप मई तक जो आजकल चली है मशरूम,
1: जी
0: कुछ रहता है, पर जनरली क्या होता है कि इसमें कि वाइस्टर मशरूम जो है ईजिली ग्रो कर जाती है। मोर ओवर इस केस में क्या है कि जैसे आपने वाइस्टर मशरूम को उगाना है तो आपको खाद पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसकी आप जो है सब्सट्रेट जो है खुद बना सकते हैं। जैसे
1: अच्छा
0: आजकल क्या है कि हमारे यहाँ पे थ्रेशिंग होगी, जैसे गेहूं को भूसा घरों में लोगों के पास है, तो लोग उसको इजिली जो है उसके ऊपर चाहें तो वो इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं।
1: जी जी
0: अब करना कैसे है, उसके दो तरीके हैं, जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप किसी शेड में भी इसकी खेती जो है शुरू कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: तो ये इसका ये इम्पोर्टेंस है कि आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं और इसमें खाद की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बटर मशरूम की बात करता हूँ तो आपको खाद जो है वो बहुत जो अहम रोल रहता है वो खाद का रहता है। इस केस में क्या है कि आप घर में जो है वो इसका सब्सट्रेट तैयार कर सकते हैं, और बीज आप जो है वो चाहे हमारे से लें, चाहे पालमपुर से लें, चाहे DMR सोलन से लें,
1: जी
0: तो बीज लेके आप इसमें खर्चा कुछ नहीं है। और इसमें आप 1 किलो अगर भूसा सूखा लेते हैं तो 1 किलो मशरूम में देता है,
1: अच्छा,
0: तो ये
1: तो
0: आप प्रॉफिट आपने आप ही निकाल सकते हैं, देखिए इसमें कितना फायदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: डॉक्टर साहब जी तो सबसे हिंदी गल करा दे, तो इसको हाँ किस तरीके ने ले सकते, या ये कोई मतलब खाद है या कोई
0: नहीं ये खाद नहीं होती, जैसे मैंने कहा आपको ना, जैसे तूड़ी है
1: हाँ जी हाँ
0: जिसको
1: जी हाँ
0: हम बीट
1: जी
0: स्टॉक बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: ये कॉमन होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जैसे पराली, कोई चावल लगाते हैं
1: बिल्कुल
0: लोग तो
1: जी जी
0: पराली को भी यूज़ कर सकते हैं। पराली आपको थोड़ी सी काटनी पड़ेगी थोड़ी सी, अदरवाइज तूड़ी अगर आप देखें तो वो कट पीसीज ही होते हैं
1: जी जी
0: वो करना कुछ नहीं होता, उसको हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं कि जिसके ऊपर इसको उगाना है उसको सबस्ट्रेट बोलते
1: अच्छा
0: हैं।
1: मतलब एक माध्यम है तीस चीज़ें जी आंधी मशरूम तैयार होंगी
0: बिल्कुल इसमें तैयार होती
1: जी जी
0: अब मशरूम टू मशरूम जो है ना ये वो बेरी करता है, जैसे बटर मशरूम के लिए हम खाद बोलते हैं क्योंकि उसमें लंबा प्रोसीजर है।
1: अच्छा
0: इस केस में क्या है कि जैसे आज आपके पास तूड़ी है, आप बीज कहीं से भी ले लो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आप प्लान कर रहे हैं, जैसे आपने डिंगरी लगानी है तो आप जहाँ से बीज लेते हैं वहाँ पे आपको टाइमली बताना पड़ेगा,
1: ठीक है,
0: क्योंकि इसका बीज जो है वो भी टेक्निकल है और नॉर्मली कहीं शॉप्स पे मिलेगा नहीं आपको, आम बाजारों में मिलता नहीं है
1: जी जी।
0: सरकारी तंत्र में मिलेगा या यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा
1: जी जी।
0: तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसका सबस्ट्रेट बनाने के दो तरीके हैं, एक केमिकल वाला तरीका है, अगर कोई जैसे कमर्शियल लगाना चाहता है
1: जी जी।
0: तो वो कमर्शियल वाला एक तरीका रहता है, दूसरा जो है वो जिसमें नॉन केमिकल मेथड इसको बोलते हैं, उसमें सिंपल आपने पानी को बॉयल करना है और उसको जो है आपके पास तूड़ी है या पैडी है
1: जी जी।
0: उसको जो है आप उसमें डिप कर देंगे, डिप करने के बाद जैसे उबल जाए तो 40-45 मिनट आप उसको बॉयल करेंगे, ठंडा होने के बाद आप बीज डाल दो, बीज डालने के बाद जो लिफाफा में डाल दें आप, उसके बाद जो है वो आप 10 दिन के अंदर जो है या 2 हफ्ते के अंदर जो है बीज पूरी तरह से फैल जाएगा
1: जी,
0: वो फसल आना शुरू हो जाएगी।
1: अच्छा
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब जी ये सबसे इन तैयार करना है या मतलब कोई यहाँ दे अगर किसान भाई इसको तैयार नहीं कर पा दे अगर अच्छे तरीके ने
0: अच्छा
1: तो क्या यहाँ जो विभाग की तरफ से या जो यूनिवर्सिटीज थे क्या ये बना बनाए सब्सटेंस भी तैयार मिलता है?
0: देखिए ऐसा आप विभाग तो देता नहीं, पर जैसे हमारा विश्वविद्यालय है तो जैसे हमारे पास कोई डिमांड आए लोगों की
1: जी जी जी
0: तो वैसे भी हम तैयार करके भी देते हैं
1: जी जी जी।
0: हाँ जी
1: तो डॉक्टर साहब जी जे अहाँ का मतलब एक मन है कि अहाँ मशरूम का उत्पादन करना तो इस वास्ते तीन तुम दस कि ओपन एयर चाहता ये नहीं होता, इस वास्ते एक कमरा चाहिए,
0: एक कमरा चाहिए,
1: कमरे च शेड वगैरह जो भी है।
0: अब शेड देखिए इसमें अब या तो हट जैसी आप बना लें
1: अच्छा जी
0: जो उस पर भी आप शुरू कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे ना, अब करना पड़ेगा आपको सीजनल, जैसे अगर आपने सारी मशरूम्स उगाने हैं तो आपको सितंबर के बाद बटन लेना पड़ेगा तभी आपका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा
1: जी, जी जी।
0: फिर उसके बाद आप साइड बाय साइड जो है वो ऑयस्टर ले सकते हैं, जैसे ऑयस्टर को अगर आपने ग्रो करना है तो आप शेड जैसे में भी ग्रो कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: बटन मशरूम का थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे थोड़ा सा कंक्रीट आपको स्पेस जो है वो वैसा होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि डेली पानी देंगे आप तो अदरवाइज फिर वाटर लॉक कंडीशंस वहाँ पे हो जाएंगी तो उसमें बीमारियां आने का खतरा रहता है
1: जी, जी, जी।
0: तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप उगा सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब जी जी बहुत सारी तो वैरायटीज दसी और सब्सटेन की तो गल की, तो अगर एक बार यहाँ का किसान भाई अगर सब्सटेन तैयार कर लेंगे तो ऐसा क्या सारे ही मशरूम वास्ते मतलब बटन भी उससे लग सकता और
0: नहीं
1: अलग अलग
0: वो मशरूम टू मशरूम बेरी करेंगे?
1: अच्छा
0: तो बटन के लिए फिर आपको खाद बनानी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: अगर फिर खाद बनानी है तो फिर आपके पास थोड़ा सा टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए या ट्रेनिंग टूनिंग अगर आपने कहीं से ली है
1: जी जी जी
0: तभी आप बना पाएंगे। अब बटन के आप देखिए बटन में खाद जो बनती है वो एक तो मशीनें हैं उसमें इन्वॉल्व हैं जिसको हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं कंपोस्टिंग का, दूसरी लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है जिसको आप घरों में कर सकते हैं, पर तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा ट्रेनिंग आपने कहीं से ली हो, क्योंकि बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए।
1: क्लियर होने चाहिए मतलब तुमने गलबात करने यहाँ जो ये जरूर एहसास होता कि जितने भी यहाँ दे श्रोता है या जितने भी यहाँ दे किसान बागवान भाई बहन अगर इस काम जो करना चाहते हैं तो बिना ट्रेनिंग तो शायद है इस चीज़ जो अच्छे तरीके ने नहीं करी सकते,
0: नहीं कर पाएंगे,
1: टेम्परेचर भी मेंटेन करना वो सारी चीज़ें।
0: अब देखिए ना हर मशरूम का जो है जो खाने वाली मशरूम से हर मशरूम का जो है वो बीज फैलने के टाइम अलग तापमान की उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जब फल आने वाला होता है जैसे फसल आने वाली है तो उस टाइम जो है वो अलग सी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये थोड़ा
1: मतलब कौन कौन एडे विभाग है या कौन कौन एडे यूनिवर्सिटीज है या तो जो नेरी विश्वविद्यालय महाविद्यालय तो क्या उत्थी भी ये ट्रेनिंग किसान भाई ले सकते हैं?
0: विश्वविद्यालय में हमारे वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का एक विंग है तो वहाँ पे ट्रेनिंग सम करवाते हैं,
1: पालमपुर जी
0: पालमपुर सोलन में,
1: सोलन में
0: पालमपुर यूनिवर्सिटी वाले भी करवाते हैं, फिर जितने भी आपके कृषि विज्ञान केंद्र है
1: जी जी जी
0: तो इनके माध्यम से जो है जो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकता है।
1: तो इस वास्ते डॉक्टर साहब कुछ आवेदन देना पड़ता है या किस तरीके
0: ये फिर जैसे उद्यान विभाग है इनसे कंसल्ट करके जो है वो अच्छा। आप आगे जो है वो ट्रेनिंग
1: मतलब जितने भी ब्लॉक स्तर पर उद्यान विभाग दे एक्सटेंशन
0: इनके थ्रू जो है आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल ڈاکٹر صاحب اگر آن دے کسان بھائی آن دے شروتا جی ایسے من لے ٹریننگ کری بیٹھے اور ٹریننگ دے بعد جیسے اس کام جو شروع کرنا چاہ دے تو بیج لگانے تے لینے اتپادن تک کتنا ٹائم اچھے لگ بھگ لگی آن دا اور کیا کیا ساودھانیاں جو برتنا چاہیے؟
0: دیکھیے اب یہ پھر یہ مشروم سے کون سی مشروم لگانا چاہتے ہیں نا اس حساب سے بیری کرے گا.
1: اچھا
0: ہاں جی جی
1: جی.
0: تو جیسے بٹن مشروم کی چلو بات کر لیتے ہیں جس کو سب سے زیادہ بھارت ورش میں لگایا جاتا ہے.
1: جی جی.
0: اس مشروم میں کیا ہے کہ جیسے آپ نے بیج ڈال دیا تو بیج ڈالنے کے بعد جو ہے وہ 15 دن لگ جاتے ہیں وہ بیج پھیلنے کے لیے. اب اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ 15 دن میں تب پھیلے گا جب اندر کا تاپمان جو ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اگر آپ مینٹین کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ سپٹمبر کے بعد اگر آپ شروع کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے روم ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اگر آپ رکھیں گے تو 2 ہفتے کے اندر جو ہے بیج یا میکسیمم 15 دن جو ہے وہ لگیں گے اس میں تو پورا بیج پھیل جائے گا. پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک اسٹیپ ہوتا ہے اس میں جیسے کیسنگ کرنی پڑے گی.
1: کیسنگ
0: ہاں جی. تو کیسنگ کچھ نہیں ہوتی, ایک ہم اسٹرلائز وہ کرتے ہیں مشینوں کے دوارا ایک مٹی ہوتی ہے. آج کل لوگ جو ہے کوکونٹ کوائر پتھ ہے اس کو یوز کر رہے ہیں.
1: اچھا.
0: تو اس کو ہم کرتے ہیں. بیسیکلی کیا ہے کہ مشروم کو اگنے کے لیے جتنے بھی آپ کے پوشک تتو چاہیے تھے وہ آپ نے کھاد کے مادھیم سے جو اس کو دے دیے.
1: جی بالکل.
0: اب اس کو چاہیے ایک شاک فیز چاہیے اس کو, شاک ٹریٹمنٹ ہم جس کو بولتے ہیں. تو اس ٹائم کیا ہے کہ ہم کیسنگ کرتے ہیں تو کیسنگ جو ہے وہ اس میں کوئی نیوٹرینٹ ڈیفیشنٹ میڈیم ہوتا ہے.
1: جی جی.
0: اس میں کوئی پوشک تتو نہیں ہوتے تو یہ سٹریس کنڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دھکا لگتا ہے اور دھکا لگنے کے بعد مشروم جو ہے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں.
1: تو یہ کیسنگ ڈاکٹر صاحب کتنے ٹائم پہ, مطلب
0: یہ 2 ہفتے بعد جو
1: بیج
0: جیسے آپ کا پھیل جاتا ہے پھر آپ کی کیسنگ کر دی آپ نے پھر آپ
1: 2 ہفتے بعد
0: آنے. پر اس میں کنڈیشن وہی رہتی ہے کہ آپ کو تاپمان جو ہے مینٹین کرنا پڑے گا. اب جب آپ نے کیسنگ کر دی تب پھر آپ کو 14 سے 18 کے بیچ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ آنا چاہیے.
1: اچھا اچھا.
0: تب فصل آئے گی.
1: اچھا. نہیں تو مطلب رزلٹ ٹھیک نہیں
0: آنا. ادروائز پھر کیا ہے جیسے 20 سے اوپر تاپمان جائے گا تو اس میں بیماریاں آئیں گی. اب ہے یہ کمرے کے اندر ہونے والی فصل, اس لیے میں تھوڑا آپ کو بتا رہا شروع میں کہ اس میں ٹریننگ کا کافی امپورٹنٹ رول رہتا ہے.
1: بالکل بالکل.
0: تاکہ تھوڑا سا بیسکس پتا ہوں. اور دوسری جو مشروم ہے اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے سبسٹریٹ تیار کر لیا ڈگری کا, سبسٹریٹ تیار کرنے کے بعد جو آپ نے بیزائی بیج ڈال دیا, آپ نے بیج ڈالنے کے بعد جو ہے وہ بھی 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ پھیل جائے گا.
1: اچھا.
0: تو 2 ہفتے لے گا وہ. بالکل. 2 ہفتے کے بعد وہ پھیل جائے گا تو اس کے بعد وہ پن ہیڈ بننا شروع ہو جائیں گے. اب بٹن مشروم آپ نے دیکھی ہوگی نا, یہ اوپر سے آتی ہے, ٹاپ سے آتی ہے.
1: جی جی جی.
0: ڈنگری مشروم کا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ چاروں طرف سے آئے گی.
1: اچھا.
0: اس میں کوئی کیسنگ کا مطلب
1: جو
0: بیگ جو ہے وہ چاروں طرف سے پھولے گا.
1: ہاں جی.
0: تو وہ چاروں طرف سے وہ پھولے گا اور اس مشروم میں وہ کیسنگ کا کوئی مہتو نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: تو ایسے جو مشروم کی اسپیسیز ہیں ویسے وہ ویریشنس چلتی رہتی ہے کس مشروم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے.
1: جی جی.
0: لائک وائز جیسے آپ ملکی مشروم ہے, جیسے آپ ملکی کی بات کر رہے ہیں, ملکی مشروم میں ہے کہ اس میں بھی کیسنگ آپ کو کرنی پڑے گی.
1: اچھا.
0: باقی گروئنگ کنڈیشنس ویسے ہی ہیں.
1: جی جی جی.
0: جیسے بٹن کے میں کیس میں بتا رہا ہوں تو ویسے ہی اس میں, پر اس کو کمپوسٹ نہیں ویسے چاہیے ہوتی ہے.
1: بالکل.
0: ملکی مشروم کے لیے
1: ڈاکٹر صاحب آہاں دی مطلب آہاں یہ سارا پروسیس کر لیا, آہاں دی فصل بھی ہوئی گئی, تو میں یہ سمجھ ہی پا رہا کہ آہاں دی شاید 30 سے 35 دن بعد یا 45 دن تک آہاں دی فصل تیار ہوئی آندی ہونی.
0: رفلی جو ہے وہ دیکھیے بٹن مشروم کی جو ہے اس میں آپ کا 1 مہینہ مان کے آپ چلیے
1: 30 کر دیں,
0: مطلب 30 دن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 30 دن کے اندر جو ہے بعد جو ہے وہ آپ کو پھل آنا شروع ہو جائے. اور جو آئسٹر مشروم ہے اس میں آپ 20 دن کے بعد جو ہے وہ آپ امید کر سکتے ہیں, اگر گروئنگ کنڈیشنز جو ہے وہ پوری آپ مینٹین کریں گے تو اس میں پھل آنا شروع ہو جائے.
1: جی جی.
0: پھر یہ چلتی رہے گی.
1: مطلب میں یہ پوچھنا چاہتا کہ ہاں ایک بار ایک فصل لے لی فرسٹ, تو دوئی فصل بھی ہاں جو اسی سے تیار بنی ہے ہاں جو
0: نہیں, پھر آپ کو سب سٹریٹ جو ہے وہ اگر آپ نے ڈنگری لگانی ہے تو پھر آپ کو بار بار وہ فالو کرنا پڑے گا. یہ چلتی رہے گی. اس کو کیا کرتے ہیں کہ جیسے ایک فلش آ جاتا ہے, جیسے فلش ہم اس کو بولتے ہیں, جیسے ایک بار بمپر کراپ آ گیا. جیسے آپ نے توڑ دی تو توڑنے کے بعد تھوڑا سا سیز کر جائے گا, رک جائے گا تھوڑے دن کے لیے, 2-3 دن کے لیے رکے گا. اس میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو باہر سے دکھ جائے گا, بیسیکلی جو مشروم کا مائسیلیم ہوتا ہے اس کی میٹ جیسی بن جاتی ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: تو وہ میٹ جو ہے آپ کو وہ کھروچنی پڑے گی, جس کو ہم ٹیمپرنگ بولتے ہیں, وہ ہاتھ سے آپ کر سکتے ہیں.
1: ٹھیک ہے.
0: تو جیسے وہ آپ کھروچیں گے تو آپ کو خود دکھے گا اس میں کہ اس میں بائٹ بائٹ سا مائسیلیم جو ہے نظر آ رہا ہے.
1: اچھا.
0: تو جیسے آپ باٹلنگ کرتے رہیں گے تو اگلا لاٹ جو ہے وہ مشروم کا آنا شروع ہو جائے گا. اس طرح سے جو ہے 3 فلش جو ہیں بڑے اچھے آتے ہیں.
1: ٹھیک.
0: 1 کلو کا بیگ لاسٹ میں آپ کا ایسا رہ جائے گا, کوئی مجھے لگتا کہ 200-250 ग्राम वो जबरदस्ती अच्छा। आपको फैलना फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी देता रहेगा।
1: अच्छा।
0: तो ये आप मान के चलिए कि 2 महीने 60 दिन तक जो है वो नॉर्मल जो क्रॉप पीरियड है
1: जी,
0: वो कहा जाता है कि 2 महीने तक आप फसल लेंगे, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे 2 महीने के बाद जैसे 2 महीने प्रोग्रेस में हो रहे हैं तो आप अगला जो है वो लॉट लगा सकते हैं, ताकि वो कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहे
1: जी।
0: तो इस प्रकार से जो है वो आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब एक अगर कोई बैग है तो चाहे 3-4 बार जैसे
0: फसल ले सकते हैं।

0: चलते कि हाँ 30 चीजें ऐसे
1: अब प्रॉपर आप वो जो ऑपरेशन है वो करते रहे आप
0: जी। डॉक्टर साहब वहाँ गल की थी कि किस तरीके ने काम करना, प्रशिक्षण भी बड़ा जरूरी है और प्रशिक्षण से जरूर अहां जो ये कॉन्सेप्ट भी समझाया जाना कि अगर अहां दे मशरूम च अहां दे खुम च कोई रोग या संक्रमण लगी आंदा तो किस तरीके ने बचाव करना, तो तुहां अहां तुहां ते जानना चाहते कि क्या क्या इस रोग लगने की संभावना होंगी, क्या क्या संक्रमण होंगे और किस तरीके ने पहचान करिए कि हाँ जी ये कुछ इस बीमारी है तो इसका जो समाधान करना चाहिए।
1: अब इसमें देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, पर ये मशरूम है, मशरूम की जैसे कौन सी मशरूम आप लगा रहे हैं उसकी बीमारियां अलग है।
0: बिल्कुल,
1: तो जो दूसरी
0: सारी चीजें अलग अलग है। अगर हाँ बटन मशरूम दी
1: बटन की अगर आप बात करें तो बटन मशरूम में क्या समस्या आती है मैं आपको बताऊँ कि अगर ग्रोइंग कंडीशन आपकी ठीक नहीं, मतलब कमरे के अंदर आप ठीक मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि या तो जैसे उसकी डंडी होती है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: तो लंबी होने का मतलब ये है कि उसमें आपने प्रॉपर से जो है वो आपकी वेंटिलेशन जो है वो मेंटेन नहीं की। क्यों अच्छा। लंबी होगी क्योंकि जब बीज फैलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। जब फसल निकलना शुरू होती है तो उसमें से गैसेज निकलती हैं, तो बेसिकली क्या होता है वो गैसेज जो हैं वो कमरे के अंदर जो है वो आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनको हम बोलते हैं मशरूम के डिसऑर्डर। फिर जब ये डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो आपको या तो वेंटिलेशन बढ़ानी पड़ेगी तभी जो है मशरूम आपके प्रॉपर साइज़ के आएंगे, अदरवाइज ऐसा भी नहीं होता कि डंडी लंबी हो और कैप जो है वो छोटी हो तो अच्छा, मार्केट अच्छा। में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: लाइकवाइज जो इसमें जो कॉमन सी बीमारियाँ आती है जैसे फ्लाइज का काफ़ी अटैक रहता है, जैसे मक्खियाँ जो होती
0: है
1: इनका भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आप प्रॉपर जो है वो हाइजीन कंडीशंस जो है वो मेंटेन करें, साफ सफाई आप पूरी रखें
0: जी।
1: और जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ पे एक तो आपका एग्जॉस्ट फैन बहुत जरूरी है,
0: जिस कमरे से हाँ लगाना चाहिए
1: उसमें आपका एक एग्जॉस्ट फैन दरवाजे के सामने लगाना चाहिए और जो डोर है आपका दरवाजा जो है दरवाजा उसमें जाली वाला दरवाजा भी होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: अदरवाइज क्या होता है कि जैसे आप मशरूम हाउस के अंदर जाते हैं तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो उसके साथ फ्लाइज चली जाती है या कुछ फंगस के स्पोर जो बाहर के एटमोसफेयर वो भी अंदर को ट्रैवल करेंगे तो वो नेचुरली फिर उसमें बीमारियां कॉज करते हैं। तो इसमें मेन सी बीमारियां जैसे बैट बबल आता है, ड्राई बबल आता है, आते अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से ही, अदरवाइज इनिशियल स्टेज में ही आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। अगर बीमारी आ जाती है तो उसके बाद इसको मैनेज करना जो है वो बड़ा टफ
0: है,
1: वो टफ हो जाता है क्योंकि आप स्प्रे करेंगे तो कहाँ स्प्रे करेंगे, वो तो खाने आप फंगस ही, अब मैं भी बताऊंगा तो मैं कोई फंजीसाइड ही बताऊंगा, तो उसकी कोई स्टेज होती है तो शुरू में ही आप डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसकी डंडी लंबी हो रही तो वो इंडिकेट कर रही है, अगर वो मोटी हो रही है और कैप उसकी छोटी दिख रही है तो उसका मतलब उसका फंगल इन्फेक्शन हो रहा है
0: जी, जी।
1: तो उसी टाइम जो है वो आप उस आप तुरंत आप क्या कर सकते हैं कि उस बैग को आप वहां से निकाल दें, उसी से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो आप उसको वहाँ से निकाल के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें कि आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर डिस्कार्ड कर दें।
0: जी जी जी जी,
1: तो इस तरह से जो है बीमारियों से भी बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल, तो जो तो बीमारी दस दस सारी फसल वास्ते होंगी, अगर डिंगरी मशरूम की गल करिए तो
1: डिंगरी में क्या होता है कि डिंगरी आप देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि डिंगरी हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि डिंगरी में बीमारियाँ बहुत कम आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो उसमें बीमारी आने के कम चांसेस रहते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी, जी।
1: तो इससे फर्स्ट टाइम जो कोई भी किसान भाई लगाता है उससे क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है कि उसने लगाया और इसमें अगर हल्की फुल्की नेग्लिजेंसी हो भी गई तो उसने सरपास कर दिया
0: जी, जी, जी,
1: तब उसमें बीमारी नहीं आई
0: जी।
1: फिर वो बटन की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, अब आप ऑपरेशन पूरे सीखे
0: अनुभव लेने वास्ते
1: थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस भी गेन होता है ना
0: जी, जी, जी।
1: तो अपने हाथों से लगाए तो उसमें से आपकी फसल आ गई, फिर आपको पूरे ऑपरेशन पता चल जाते हैं तो आप बटन मशरूम की तरफ जा सकते हैं
0: जी जी जी। और डॉक्टर साहब जो भी बीमारियां हैं वहाँ जो पहचान होना चाहिए बड़ी जरूरी है, तो इस हिसाब बने जो से काम करना चाहिए और जो लगता कि आज जितने भी विभाग है सभी जरूर आंदे विशेषज्ञ जैसे मदद कर दे इस बारे
1: में जरूर जरूर, हमारे से कोई पूछता है तो हम भी जरूर बताते हैं
0: जी। और डॉक्टर साहब मशरूम जो ऐसे एक सुपर फूड भी बोला जाता है
1: जी,
0: तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब?
1: देखिए सुपर फूड इसलिए बोला जाता है मशरूम की ना जी, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत हैं और जो न्यूट्रिशनल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मशरूम में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे विटामिन डी की मैं बात करूँ तो विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी के अलावा किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं मिलती।
0: अच्छा,
1: जबकि वो मशरूम में पाई जाती है।
0: जी,
1: बाकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं
0: जी, जी।
1: तो इस वजह से इसको सुपर फूड कहा जाता है
0: जी।
1: आजकल जैसे मेडिसिनल मशरूम्स पे बहुत काम हो रहा है, जैसे शिटाके करके एक मशरूम है।
0: अच्छा जी,
1: तो वो थोड़ा सा वो टेक्निकल जैसी वो है और उसमें थोड़ी सी मशीनरी इन्वॉल्व है,
0: मतलब कमर्शियल भी इस द प्रोडक्शन
1: नहीं, कमर्शियल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: कमर्शियल कर सकते हैं, वो

0: थोड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगी। अच्छा। कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखने पड़ेंगे। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि बीज आप वैसे डाल दो
1: जी जी।
0: अब अगर आपने किसी ने स्टाके को पे करना हो कल्टीवेटर, तो उसको आपको लैमिनार एयर फ्लो को हमारे पास रहता है लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट
1: जी जी,
0: तो उसी में ही आपको बीज डालना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: ओपन कंडीशन में आप उसमें बिजाई नहीं कर पाते भी, तो इसमें थोड़े से इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वॉल्व है।
1: तो क्या ये संभावना है हमारे हिमाचल से?
0: हाँ, आने वाले समय में तो इसमें काफ़ी लोग जो है वो जुड़ रहे हैं जी,
1: जी, जी
0: शिटाके की तरफ जा रहे हैं लोग, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफ़ी यूज़ हो रहे हैं इस प्रोडक्ट में, वैल्यू एडिशन के बाद इनको यूज़ करते हैं। जबकि शिटाके तो एडिबल है, इसको खाते भी हैं।
1: अच्छा।
0: अब कुछ एक मशरूम्स ऐसी हैं जो सिर्फ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: अदरवाइज वो खाने योग्य नहीं है, पर आप उसको उगा के जो है वो ड्राई करके जो है वो आप पाउडर फॉर्म में कहीं बेच सकते हैं।
1: हाँ।
0: पर इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसको आप खा भी सकते हैं
1: जी,
0: और ये इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं
1: जी, जी। तो मतलब प्रशिक्षण से ट्रेनिंग के दौरान शायद
0: ये चीज़ें सारी बताई जाती
1: हैं, बताई जाती हैं
0: कि कौन सी मशरूम जो है कैसे उगानी है।
1: जी जी
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या क्या है डॉक्टर साहब, कि आंधे किसान भाई, आंधे श्रोता, आंधे जितने भी इस कार्यक्रम में सुनने वाले, ऐसे कोशिश कर दे कि यहाँ कोई ना कोई नया इस तरीके के माध्यम ने कोई अपना एक व्यवसाय जोड़िए। समस्या क्या है डॉक्टर साहब, कि जल्दी जहाँ इस काम जो करी बैठ दे, ता अहाँ जो एक सबसे बड़ी समस्या आंदी थी इस दे विपणन दी।
0: अच्छा,
1: इसकी मार्केटिंग दी,
0: मार्केटिंग
1: तो इस वास्ते थोड़ा तो क्या सुझाव
0: है? मैं आपको बताऊँ, मार्केट की कोई इशू नहीं है। देखिए, हमीरपुर में ही आप देखेंगे तो ऑयस्टर कोई देता है आपको, तो लोग नाम जानते हैं कि कौन सी मशरूम है,
1: डिंगरी ऑयस्टर जी।
0: तो इनके टेस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे सोलन तो बहुत साल पहले से चलता आया है। अब बटन को आपको बोलने की जरूरत नहीं कि बटन मशरूम है, मार्केट में आप देख सकते हैं कि राउंड द ईयर आपको बटन के पैकेट
1: मिल जाते हैं
0: और टेस्ट लोगों में डेवलप्ड है, तो मार्केट का मुझे लगता नहीं है कोई इशू है जी।
1: तो कुल मिलाकर ने अगर आंधे किसान भाई, आंधे श्रोता अगर इस पर काम कर दे, मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है?
0: कोई समस्या नहीं है,
1: आंधे लोकल मार्केट जी, जी
0: कंज्यूम लोकली ही कंज्यूम हो जाते हैं
1: जी जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जरूर ये मन चाहता कि तू गल की थी कि इस वास्ते एक कमरा चाहिदा, तक कमरा पक्का कच्चा या कितने बाई कितने का होना चाहिए?
0: देखिए, मिनिमम जब आपने मशरूम लगाने हैं, अगर आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपके पास कच्चा है तो आप उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो जैसे कच्चा है आपका, तो आपके पास नहीं है पैसा कि आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप नीचे पॉलिथीन शीट बिछा सकते हैं, आप शेल्फें बना दीजिए, शेल्फें आप बांस की बनाइए, उसमें क्या फ़ायदा रहेगा आपको कि खर्चा आपका कम रहेगा, फिर जैसे आपका चलता जाएगा प्रोजेक्ट, फिर आप उसको पक्का बना लीजिए।
1: जी जी जी।
0: तो यही चीज़ें हैं सर इसमें ध्यान देने वाली
1: जी। और बाकी तुम्हें दस्या कि वेंटिलेशन होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना
0: चाहिए। हाँ, वो आप मैंने बता दी कंडीशन की, उसमें ये दो तीन पॉइंट्स हैं, और जो डोर के बाहर जो एक डिप्रेशन जैसा आप बना दें, उसमें आप एक दवाई मिलती है जो है फॉर्मलिन, वो 1:7 रेशो की, जैसे एक कप आप पानी में डालेंगे तो 7 भाग पानी का डालेंगे, तो वो आप हमेशा उसको डाल के अंदर आएँ, उसमें पाँव अपने डिप कर लें
1: जी। तो डॉक्टर साहब, हाँ, इस वार्ता से यही चीज़ समझी पाएगी, अगर आंधे कोई किसान भाई, अगर आंधे युवा इस व्यवसाय जो अपनाना चाहते, तो सबसे पहले तो प्रशिक्षण बड़ा जरूरी है, और इस वास्ते से कृषि विभाग ने, बागवानी विभाग ने, या कृषि विज्ञान केंद्र, या तुमने भी संपर्क कर सकते,
0: बिल्कुल कर सकते हैं,
1: महाविद्यालय से भी संपर्क कर सकते। तो डॉक्टर साहब, आखिर चाहिए जरूर पूछना चाहते कि आंधे जितने भी किसान बागवान भाई बहन है, महिला है, तो अगर तीना ये कार्यक्रम सुना दे और तीना ये काम करना शुरू करना हो, तो तुहां दा महाविद्यालय जी ऐसे क्या इस बीज उपलब्ध कराई सकता
0: है? जी, हम उपलब्ध कराते हैं
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, तुहां इस कार्यक्रम चाहे और इतनी अच्छी जानकारी तुहां आकर ने साझा की, इस वास्ते हाँ बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दे, और हूँ जैसे आंधे श्रोता, आंधे किसान के ने भगवान भाई बहन जैसे सब्जी मंडी समिति हमीरपुर ते फलां सब्जियां करने जिनसा दे थोक भाव की जानकारी जी असर प्राप्त कर सकते। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम च आए तो वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। मैं 2 मिनट
2: गोभी 40 ते 50।

0: साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, भी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं, आप सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और आशा भोंसले की।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन राम का नाम है तो समझ लो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जीतने के लिए जिद्दी होना जरूरी है लेकिन राम की तरह मर्यादा में रहकर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दूसरों का दुख देखकर जिसका मन भर आए, समझ लेना उसमें साईं बसते हैं।

माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

0: मौसमारी गल करिए है ना, तो अजकल अरे मौसम च सबसे ज़्यादा एक भय जो असें आज लगी रह रहे हैं, क्योंकि अहाँ दस जो ग्रामीण क्षेत्र है तीस दे आसपास जो ऐसे जंगल भी है
1: बिल्कुल
0: वनस्पति भी है, और अहाँ रे सजे अगर अहाँ हिमाचल के निचली पर्वतीय क्षेत्र की गल करिए तो अहाँ बल जैसे चीड़ रे जंगल ज़्यादा है
1: ज्यादा
0: ना।
1: इन्हें कहीं तिथि क्या होंगे ही है यहाँ पे दिखाया चलारू जी ऐसा पेरा होंगे ही है, क्योंकि गर्मी से सारा
0: सुखी
1: अलिया
0: गिरा हुई है
1: अली आंदा
0: बिल्कुल।
1: सारा ना, पर सहजे थल्ले पेड़ होंगे ना चलारू। अहें देखा ग्रां दे लोग बड़ी कोशिश करते पे तीसरा जी ऐसे इस्तेमाल करी लै नहीं
0: जी
1: आता,
0: जी
1: कहीं तीसरा इस्तेमाल होंगे भी आ।
0: जी जी
1: हमारी दादी ही ना तसे तीस चलारू बिन्या बनाई देंदे
0: बनाए
1: थे,
0: देने
1: फिर
0: बिल्कुल
1: और भी कई जो ऐसा डेकोरेशन का समान देना बनता ही गया,
0: बिल्कुल,
1: सौगी मल्चिंग से जो है तीस चलारू इस्तेमाल हो जाता ही
0: गोटे
1: है।
0: च तीस दा इस्तेमाल करते
1: हाँ
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: पर ये अभी आंदा ये जे चिलारू है बहुत ज्यादा मात्रा च है ना,
1: बढ़िया मात्रा च रही
0: तब
1: आंदा फिर
0: रही आंदा
1: भी।
0: फिरी भी है ना, लेकिन इस सबसे बड़ा सा जे खतरा एक लगदा सा लगदा गर्मियां च खासकर अगजनी दा है।
1: हाँ आग लगेगी ना ता फेरी जी ऐसे बड़ी फिर मुश्किल हो
0: बहुत
1: जाती,
0: मुश्किल
1: सियाने बोलते हैं पे आग कने पानी, भाई इन्हें ते कोई चीज नहीं बची आई,
0: बिल्कुल
1: अगर
0: जी
1: ये भयानक रूप ले लेना ना तब ये सब कुछ तबाह जैसे हो सकता ही
0: हो ही
1: है।
0: सका, और देखो एडा तो है नहीं कि भी जंगल च है जे आग लगी सही है लगी एकदम ही, कुछ ना कुछ जेडे कारण होंगे चाहे से मानव दे द्वारा कितने हुए कार्य हो या कई बार प्राकृतिक रूप से जैसे हो जाता है
1: हो
0: ना।
1: जाता
0: हूँ
1: बिल्कुल।
0: गर्मी इतनी ज्यादा ही है तो हो सका भी जी कोई बिजली पेगी या
1: हाँ
0: कोई यहाँ जंगल च कोई कांच है ऐसे उत्थी पेग रहा होगा ना तीसदा है जे धुप्पे ने जे ऐसे थोड़ा इस
1: पटकी गई है ना तो
0: पटकी
1: तीसरी
0: गया तीस
1: चिंगारी
0: ते
1: निकली आंदी कई बारी।
0: हाँ या तीस चाहे जो होंगे ना कई बार लेंस हाँ ये कर दो जो आग
1: हाँ
0: लगी आई तो कई चीजें होंगी। अच्छा कई बार क्या होंगे कि आह अपने खेतीबाड़ी जो गेरे आह दे सजे पुराने बुजुर्ग गए बई देखो कई बार बीड़ी सिगरेट वगैरह पींदे रहते हैं ना, तो काम करा दे बीड़ी भी पिया दे और सट्टी तीजी महाराज भाई चलो कोई नहीं है, और उत्थी अगर कोई सूखा घा होगा या सूखी पत्तियां या सूखा कोई मटीरियल होगा तो एकदम अगर हवा चीज से चली कने तीनी चिंगारी है जी ऐसे आग का रूप ले लिया और
1: आओ
0: क्या होया आंधी लापरवाही थे आग लगेगी।
1: कने आजकल है ना देखा जग तो पाई एक चीज और भी दिख रहे पे है, खेतां दी साफ सफाई कर दे है ना चील मळा करा दे है, तो
0: जी
1: कई
0: जी
1: बारी ऐसे
0: जी
1: सहजे हुंदा है इकट्ठा कीती ना वा
0: जलाए
1: ता
0: गया
1: हां खेत साफ
0: बिल्कुल
1: करने लगी रहंदे तो तिसों है आग लगाई रही हुंदी सही आग जी, ऐसे कई बारी ऐसे घर जवाई आंदे वापस तो कई बारी हवा ने उड़ी ने जी
0: कुछ
1: ऐसे
0: भी जा सकते
1: जाई
0: हैं
1: सकदे है
0: और
1: ना
0: क्या
1: भैया ना
0: बिल्कुल, थोड़ा जिहा भी सूखा मिलिया नहीं कने आग जैसे
1: लगी
0: भड़केगी
1: नहीं।
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: कुछ ही केड़ी सावधानियां भी असन जो बरतनी चाहिए ताकि यहाँ दी है जे वना च आग है तिस्सू है बचाए सके, क्योंकि सिर्फ एड़ा नहीं है कि तीस से सिर्फ मानव जीवन जो ही खतरा है, आंधी जितने भी जंगली पशु पक्षी ये भाई तीना जो भी बहुत ज्यादा खतरा है। आंधे तो चलो भी आहा अपने घर च जे ऐसे रेस्ट हो जाना आराम हो जाना आहा दूर चली आएंगे, पर है जे जंगली जानवर है तीना कुती जाना
1: इससे क्या होंगे पे है जीव ना घायल हो जाते हैं ना ना
0: बिल्कुल
1: फिर या तो फिर मरी आते हैं ना, तो इससे तो और भी ज्यादा नुकसान होंगे, तो देखा जंगल अगर आग लगी जाती तो इससे हमारे पर्यावरण जो भी नुकसान होंगे,
0: हाँ
1: वन्य जीवन जो भी खतरा रहता, कने हमारे मानव जीवन पर जैसे भी प्रभाव पाता ही है
0: प्रभाव
1: ना।
0: पौंदा
1: तो
0: बिल्कुल
1: देखा जब तो भाई हाँ ना आप जंगल की अगत कि बच सकते हैं ना, इस बारे से हाँ आगे गलबात करनी आई, पर पहले सारे मिली ने सुनना है
0: लोक
1: लोकगीत।
0: गीत बिल्कुल।

0: स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है
0: तो घबराइए नहीं इसका इलाज संभव है स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है
1: यह सर्जरी सुरक्षित है बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766
0: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य
2: श्रोते आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है 7:45 होने को हैं अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे कृपया प्रतीक्षा करें।

0: का महापर्व पंचायत चुनाव 2026
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को MIS के तहत खरीदे फलों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रदेश सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर दी नियमित नियुक्ति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 28 मई से झमाझम बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत आज प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में रिकॉर्ड 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले पंचायती राज चुनावों में प्रदेश में 77% मतदान हुआ था। मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और कई स्थानों पर नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्र दराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं विकास खंड की सेऊ ग्राम पंचायत के पिंक बूथ पर प्रदेश की सबसे उम्रदराज मतदाता 113 वर्षीय मंगलू देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह शिमला जिला की ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी के करोली गांव की 100 वर्षीय रामपति और हमीरपुर जिला की टिक्करी मिनहासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव की 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई ग्राम पंचायतों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इस बीच कुल्लू जिला में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सिरमौर जिला में 75.52%, जबकि सोलन जिला में लगभग 80.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिला में 78.25% और बिलासपुर जिला में 75.61% मतदान हुआ। हमीरपुर जिला में 72.17% मतदान दर्ज किया गया। इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा भुगतान प्रणाली में बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर विभाग द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। उन्होंने भी निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार होगा। भारत सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कार्य के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे। जनगणना आयुक्त के अलावा तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि इस समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर के व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सुनील बिट्टू ने आज उनसे मिलने आए हमीरपुर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखकर उनका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमीरपुर शहर के व्यापारियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगी। प्रतिनिधिमंडल ने सुनील बिट्टू को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि हमीरपुर बाजार में स्थित मुख्य बस अड्डे को निर्माणाधीन बस अड्डे में स्थानांतरित करते समय हमीरपुर के लोकल रूट नए बस अड्डे को स्थानांतरित न किए जाएं। व्यापारियों ने अपने अन्य मुद्दे भी सुनील बिट्टू के समक्ष रखे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी पदोन्नति संबंधी अधिसूचना आज कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं। जयराम ठाकुर ने आज सरकार द्वारा वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में उन्हें स्थायी मुख्य सचिव बनाना सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिलने का दावा भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव इस बार नए तेवर, व्यापक स्वरूप और जनभागीदारी के बड़े विजन के साथ नजर आएगा। ग्रीष्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष व उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अब तक रिज मैदान की सांस्कृतिक संध्याओं तक सीमित रहने वाला प्रतिष्ठित उत्सव इस बार स्कूलों, खेल मैदानों, साहित्यिक मंचों और शहर के अलग अलग हिस्सों तक अपनी पहुँच बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की तिथियों में इस बार बदलाव किया गया है और इसका आयोजन 8 से 12 जून तक होगा।
1: तो एक बड़े

0: ब्रॉड लेवल पर जो हमारा पदमदेव कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर हमने ये तय किया है कि डिफरेंट कॉलेजेस, फाइन आर्ट्स कॉलेजेस, आम पब्लिक पेंटिंग और डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगी। उसके लिए हम टाई अप किया है कि वहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाए ताकि एक आम आदमी का कनेक्ट जो है वो किसी एक्टिविटी में बना रहे और रोड सेफ्टी की जो और भी जितनी भी चीजें हैं उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन बच्चों की बनी रहे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम एक साथ में मिला करके उनका इंटरेस्ट बना के उनको एक मैसेज भी फेस्टिवल के तरीके से दें और ताकि वो एक इंजॉय भी कर सकें कि एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला के कई हिस्सों में आज लू जैसे हालात बने रहे। ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कल 27 मई को राज्य के 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। समिति ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और प्रभावित लोगों की आवाज बुलंद करने की मांग की है ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।
2: जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे, वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम पेड़ आए। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है, ना तो उसके ऊपर कोई FIR हुई है। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम उनका जो एक हक है वो मिल सके।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को MIS के तहत खरीदे फलों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रदेश सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर दी नियमित नियुक्ति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। 28 मई से झमाझम बरसेंगे बादल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: श्रोताओं भी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: श्रोतम सुनिए एक विशेष सूचना। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार हमीरपुर, विलासपुर और ऊना जिलों के लिए अग्निवीर, क्लर्क, स्टोरकीपर, सामान्य कार्य, तकनीकी और ट्रेडमैन पदों की अंतिम मेरिट सूची 25 मई सन 2026 को घोषित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेजीकरण और पूर्व प्रेषण औपचारिकताओं के लिए 27 मई सन 2026 को सुबह 8:30 तक हमीरपुर सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमीरपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में टेलीफोन नंबर 01972222214 या ईमेल veerbhoomi.01@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

हवामहल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का दूसरा भाग। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: గుడ్ ఈవినింగ్ అంకుల్.
1: ఓ గుడ్ ఈవినింగ్ విక్రమ్.
0: హలో ఆంటీ.
2: అచ్చే హో విక్కీ,
0: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी.
1: अरे भाई, ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है.
2: किवी बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कवि के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो. वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है.
0: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ. अरे कहाँ है सब लोग?
2: पिछले लॉन में है, डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ. मैं चलूं
0: आपके साथ? नहीं आंटी, आप बैठे रहिए, आप फिक्र न कीजिए, मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ.
1: He is a smart boy.
2: बहुत. देखो ना, सिर्फ 4 साल हुए हैं सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है. अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है, 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा. किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल 2 साल बाद तो.
1: अरे भाई, मैं उसकी नेचर की बात कर रहा हूँ.
2: हाँ, अच्छा है, अच्छा है. हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था.
1: मैंने गौर नहीं किया.
2: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं. मगर ये जरूर है जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना. आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
1: देख रहा हूँ.
2: किवी से लकी गर्ल.
3: ओ हाय विकी.
4: हाय.
2: ए, आप आए हो हैंडसम?
3: हेलो ज़ाहिदा,
0: आज बहुत चहक रही हो.
2: तुम जो आ गए हो.
3: I'm jealous.
2: तुम्हारी किस्मत दिल पर रहे ये नक्श, ये बेमहरिया तेरी जाना और इस तरह से के मुड़ कर ना देखना. आदबर से, आदबर से.
5: यार बड़ी देर कर दी आते हैं.
0: ओ हेलो चोपड़ा.
6: हेलो. अरे भाई कहाँ रहते हो यार?
0: तुम सुनाओ कहाँ रहते हो, साल भर बाद दिखाई देते हो.
6: क्या बताऊँ दोस्त, मेरी शादी जो हो गई.
2: मैंने कोई जंजीरें नहीं बांध रखी है भाई साहब.
0: नमस्कार भाभी, लीजिए आप तो फौरन ही डिफेंस पे उतर आए.
2: देखिए ना, खुद तो रात दिन ऑफिस में पड़े रहती हैं और बदनाम हो बेचारी बीवी.
5: अभी तो
2: सुबह हार्ट बीट.
0: हार्ट बीट? अरे किशोरी क्या खिताब है भाई.
2: जनाब शायर हो चुके हैं और धड़कन तो खुल्लस फरमा दे. मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया.
0: यार तुम तो अच्छे भले थे.
7: हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं.
0: आई जी ज़ाहिदा, ये केस सीरियस है.
2: लेकिन इनसे ये तो पूछ लीजिए कि वो है कौन.
0: भाई कोई होगी, हमें तुम्हें क्या.
2: मुसीबत तो यही है कि वो कोई भी नहीं है. ये हजरत गर्दन उठाए उठाए फिरते हैं लेकिन कोई भी पट्टा डालने को तैयार नहीं है.
0: ये बात. सुनो, कीवी कहाँ है?
8: जी बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई.
0: ओ हेलो कीवी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो.
8: थैंक यू. आपके लिए क्या लगा?
0: नाराज हो कीवी?
8: नहीं तो मैं क्यों होने लगी नाराज.
0: नहीं तुम नाराज हो क्योंकि मुझे आने में देर हो गई.
8: ये शोर, ये हंगामा, कह कह की भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेले बन का शिकार होकर कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे.
0: I'm sorry, Kiwi. Really?
8: मेरा जन्मदिन के साल में 10-12 बार आता है.
0: ये मैंने कब कहा?
8: तो फिर साल में एक बार भी तुम वक्त पर नहीं आ सकती.
0: ये बात नहीं कीवी कि मैं वक्त पे आना नहीं चाहता, पर क्या करता, बस उठते उठते कुछ खत आ गए थे, उनका जवाब आज ही जाना जरूरी था, बस वो खत्म करते ही मैं चला आया.
8: कल तक नहीं रुक सकते थे?
0: रुकने को क्या नहीं रुक सकता?
8: वक्त तो नहीं रुक सकता ना. चाहती तो मैं भी यही थी कि घड़ियां ठीक 6:30 बजे रुक जाए और जब तक तुम ना आ जाओ वो वहीं रुकी रहे. पर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, तुम आ ही गए, मेरे पर यही बहुत एहसान है. वरना सबके सामने मेरी नाक कट जाती. पहले ही मेरी फ्रेंड्स मुझे बेवकूफ कहती है.
0: वो खुद बेवकूफ
8: नहीं, मैं सोचती हूँ मैंने ही अपने आप को बहुत गिरा लिया है. तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो.
0: कैसी बातें करती हो कीवी, तुम्हें क्या मालूम सिर्फ तुम्हारी खातिर आज मैंने कितनी इम्पोर्टेंट रिसेप्शन कैंसिल.
8: ना ना ना, मेरी खातिर क्यों मिस करते हो इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी. जाओ जाओ, हो
0: आप. ओ, मेरा मतलब ये नहीं था कीवी, तुम तो जरा सी बात को लेकर.
8: जरा सी बात ठीक है, जरा सी बात ही तो है. अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय ला.
0: कीवी सुनो तो. ओफो, क्या मुसीबत है, कौन समझता है. ओह कमला भाई माफ करना, मुझे आते आते बहुत देर हो गई। क्या करता, कोई स्कूटर ही नहीं मिला।
2: अब बैठ भी जाओ ना।
0: तुमने मुझे माफ कर दिया ना।
2: डोंट बी सिली। बात बात पर माफी मांगने वाले लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से अजनबी किसी गाड़ी में इकट्ठे सफर कर रहे हों।
0: तो तुम्हें कैसे लोग अच्छे लगते हैं?
2: जो चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ जाए। लो टॉफी खाओ, बस आखिरी बची है। दो मिनट देर से आते तो ये भी नहीं रहती।
0: अब तक कितनी टॉफियां खा चुकी हो?
2: पूरे 100 ग्राम लाई थी, तुम आए नहीं। इंतजार करती रही और इन टॉफियों के कागज उतार उतार कर इन रंग बिरंगे कागजों से बैले डांसर्स बनाती रही। देखो कितनी ढेर सारी डांसर्स बना डाली है।
0: देख रहा हूँ। अब क्या इनको नचाओगी?
2: किसी को नचाना आता होता तो बात ही क्या थी।
0: तो फिर इनका क्या होगा?
2: मुझे क्या मालूम, अकेले वक्त नहीं कट रहा था ना तो बना रही थी। अब तुम आ गए हो तो छोड़ो इन बातों को, मीठी टॉफी खाओ और कोई मीठी बात करो।
0: मीठी मीठी बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें।
2: दो मीठे बोलों के सिवा जिंदगी में और रखा ही क्या?
0: बहुत कुछ है कमला, बहुत कुछ। तुमने कभी इससे आगे सोचा ही नहीं।
2: सोचने समझने के लिए तुम जो हो। क्या फैसला किया है?
0: किस बात का?
2: बाहर जाने का।
0: जा रहा हूँ।
2: बहुत जरूरी है जाना? क्यों?
0: कमला हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी रेस है जहाँ पिछड़े हुए घोड़े को लोग गधा कहते हैं।
2: लेकिन सभी घोड़े तो रेस में फर्स्ट नहीं आते।
0: लेकिन मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। 2 साल विदेश में लगाकर जब लौटूंगा तो देखना मेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी।
2: बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी,
0: मुझे यकीन है।
2: फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा।
0: जाहिर है।
2: फिर जितना होगा उस पर संतोष कर सकोगे, और ज्यादा पाने की इच्छा क्या खत्म हो जाएगी?
0: अगर एम्बिशन खत्म हो जाए कमला, तो मैं समझता हूँ जीने का मकसद ही खत्म हो जाए।
2: और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे विक्रम। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी।
0: लेकिन हौसला छोड़कर एक जगह बैठ जाना भी तो बुजदिली है।
2: मैं तुम्हें हौसला छोड़कर बैठ जाने को नहीं कहती, लेकिन डरती हूँ तेज चलते हुए पहियों के साथ भागते हुए कहीं तुम भी सिर्फ एक मशीन बनकर न रह जाओ। मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा।
0: इस वक्त तुम्हारा ऐसा सोचना शायद ठीक हो, लेकिन ऐसा छोटा सा घर पा लेने के बाद फिर जल्द ही वो घर बहुत छोटा सा नजर आने लगता है। तब कई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं और उस वक्त उनको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
0: अगर भरोसा न होता तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ के जाता? पर जरा सोचो तो, एक खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत कपड़े पहनकर क्या भत्ता हो जाता है? तुम मेरे लिए एक अनमोल हीरा हो, उसे मैं पीतल की अंगूठी में जड़ना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मुझे सोने की वो अंगूठी पैदा करनी है जिसमें जड़कर तुम्हें हर तरह की खुशी मिले और मुझे फख्र हो। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो कमल डार्लिंग।
2: डार्लिंग?
0: क्यों, क्या हुआ?
2: तुमने मुझे डार्लिंग कहा विक्रम।
0: कोई पाप कर दिया मैंने?
2: भगवान के लिए मुझे कभी डार्लिंग न कहना।
0: क्या मैं तुमसे इतना दूर हूँ कि तुम्हें प्यार से पुकार भी नहीं सकता?
2: नहीं, ये प्यार नहीं।
0: तो
2: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बुआ आती है।
0: तुम्हें मेरी और कौन कौन सी बातों से बनावट की बुआ आती है?
2: लो अब तुम बुरा मान गए। विक्की साहब माफी चाहती हूँ, काश आपको एक टॉफी और खिला सकती तो थोड़ी देर और मीठी बातें कर सकते।
0: चाहो तो वैसे भी मुंह मीठा हो सकता।
4: यार विक्रम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
9: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगे।
10: ओह नो,
4: ओह यस,
10: ओके ओके, क्या सुनाओ? अच्छा, ऐश किया है

0: जगह ठंडी हो रही है विकी।
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ कीवी, तुम ही को तो ढूंढ रहा था।
0: आई डोंट बिलीव यू।
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो करीब आओ।
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे कीवी। ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
3: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में, कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
3: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
1: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
3: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है, तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
1: जाहिर है पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
3: डोंट बी सो सीरियस, आओ बाहर चलो।

0: साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म यू टर्न से। इसे गाया है असित त्रिपाठी ने, गीत रश्मि विराग का है, संगीत आरको का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

पुनीत ब्रदर्स, परंपरा टंडन, पीयूष मेहरोलिया की आवाजों में सुनिए सत्य प्रेम की कथा फिल्म का गाना। गीत कुमार ने लिखा है, संगीत मीत ब्रदर्स का है।

ब्रेक के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना। इसे गाया है अभय जोधपुरकर ने, गीत इशात कामिल का है, संगीत अजय अतुल का।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में
3: श्रोताओं, भैया विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। रात्रि के 8:45 होने गए हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसर्स एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost,

श्रोताओं, भैया आप न्यूज़ एट नाइन सुन रहे थे। आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, आज के फनकार। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: श्रोताओं नमस्कार। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
4: कोई

मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के

बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजाद खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं, भी अभी भारतीय राष्ट्र प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, आप सुनिए साहित्य जगत कार्यक्रम।
1: मेरी आज की कविता ही जमीना खिलियां मत छड़ दे, जमीना खिलियां मत छड़ दे, सजना खेती बाड़ी करने ते जी नहीं अपना चरवाना, जे करला जो राशन मिलना बंद हो जाओ फिर कुछ दिया माओ जो मासी गलाना, तानो तेना बुजुर्गों जो बोले पे तानो तेना बुजुर्गों जो सजे दिन रात एक करने खेती थे कमांदे, सजे दिन रात एक करने खेती थे कमांदे, बस सारा काम आशा छिने करना कने कदी मथे बट नहीं थे पाते, अज भी पिछले सियाणिया वो अज भी पिछले सियाणिया दित्तू दा खेती बाड़ी करने जो माड़ा मोटा गेड़ा, वो खेती बाड़ी करने जो माड़ा मोटा गेड़ा कने नवी पीढ़ी गोडे भरने बैठी गो दी फिर किए लगना भला पार बेड़ा, कमाने जो तापू दे कने खाने जो मूँह बाकू दे, बोलते भे कमाने जो तापू दे कने खाने जो मूँह बाकू दे, वो जली ने एड़ा भी पई याद आ फिर सियाने जो गलाना, कने सजनो खेती बाड़ी करने ते कने जी नहीं अपना चुराना, जे करला जो राशन मिलना बंद हो जाओ फिर कुछ दिया माओ जो मासी गलाना, अगे बोलते जी भई देखा आहां दा मुल्क कृषि प्रधान देश आ, आहां दा मुल्क कृषि प्रधान देश आ, इत्थी भांत भांत दी हुंदी आई खेती, वो इत्थी भांत भांत दी हुंदी आई खेती, पहले बनावटी खादी दा लोगों जो पता ही नहीं था, खेतर च पाउंदी थी खाद देसी, सभी कही औले औले लोके माल टांडा रखना छड़ीता, वो औले औले लोके माल टांडा रखना छड़ीता, वो गोडन दे गोड पे है खाली, सभी कही दी बेल हुंदी जादी, लोग केड़िया चली पै पुठिया चाली, थैलियां दे दुद्ध ने वो थैलियां दे दुद्ध ने लाउदी सारा दिन चाई ने प्रीत लाना, बोलते जी पे थैलियां दे दुद्ध ने लाउदी सारा दिन चाई ने प्रीत लाना, सजनो खेती बाड़ी करने ते कने जी नहीं अपना चुराना, जे करला जो राशन मिलना बंद हो जाओ फिर कुछ दिया माओ जो मासी कलाना, बोलते भी अज जगह जगह दिखी लिया सारे अपू नज़र मारी, अज जगह जगह दिखी लिया सारे अपू नज़र मारी, बस दो चार खेतरू रखू दे छली काकड़िए जो और खिली पौधी जमीन सारी, चलो इं जमींदार जमींदार भी सच्चे, इं जमींदार भी सच्चे, पे आवारा पशु जा दे कसरा सारिया गुआई, वो आवारा पशु जा दे कसरा सारिया गुआई, चलो इं जमींदार भी सच्चे आवारा पशु जा दे कसरा सारिया गुआई, कने बंदर तो जमीना खरोली खरोलने बीजा भी जा दे खाए, हारी फारने लोग केड़ा सोचा दे, वो हारी फारने लोग केड़ा सोचा दे, खाओ खसम जो छापा कजो जी अपना सुखवाना, सजनो खेती बाड़ी करने ते कने जी नहीं अपना चुराना, जे कला जो राशन मिलना बंद हो जाओ फिर कुछ दिया माओ जो मासी गलाना, भाइयो नाराज दिखे होंगे, भाइयो नाराज दिखे होंगे अपने जे माल मिलना था इन्हें लोग जमे बनाए थे नकारे, जे कुछ ये मिलना बंद हो जाओ फिर दिखा पे दिन भी कि लगने दूसण तारे, इन्हें इस माले की बदौलत वो इस माला की बदौलत माणु दिन पर दिन होंदा ज़्यादा नकम्मा, माणु दिन पर दिन होंदा ज़्यादा नकम्मा, फिर सोचा दा चलो फिर राशन तो मिल ही जाना, वो पै रे दा अखी मिटने लम्मा, अजें भी किसी नहीं बिगड़िया सजना, अजें भी किसी नहीं बिगड़ा, जे अपना भला चाहते तो जमीना मता छड़ दे कमाना, सजनो खेती बाड़ी करने दे करें जी नहीं अपना चुराना, जे कला जो राशन मिलना बंद हो जाएगा फिर कुछ दिया माओ जो मासी गलाना, अगें अर्ज करते जी बोलिया भाई वो सियाने ते भी डोल नहीं बैठे हुंदा, सियाने ते भी डोल नहीं बैठे हुंदा, सटिकें जो बोला दे वो मोह अड्डा नपाना सिखा, वो मरी गया अड्डा नपाना सिखा, इन्हें खेतरू खिले मता छड़ दे कने थोड़ा बहुत इन्हें दबासा भी दिखा, तो पता क्या बोल दे, तो पता क्या बोला दे, असें नहीं चकूदा तुम्हारे खेतर कमाने का ठेका, वो असें नहीं चकूदा तुम्हारे खेतर कमाने का ठेका, जे तुह भी कमाना तो कमा नहीं तो डोल बैठे ने धुप्पा सेका, तो भले चुप रही ने भलाई, सजना चुप रही ने भलाई, गलाई ने कजो बेला दिल अपना दिखाना, सजनो खेती बाड़ी करने ते कने जी नहीं अपना चुराना, जे कला जो राशन मिलना बंद हो जाएगा फिर कुछ दिया माओ जो मासिक लाना, फिर ही दिखा पहले धाना दियाँ कणक दियाँ खुआड़े कई कई दिन पई रहनी थी गाणी। पहले ता ननिया कणक दिया खुआड़े च कई कई दिन पई रहनी थी गाणी। सारा दिन पनोडी सिरा पर रखोई रहती थी, बस हवा चलनी कने ता ही पनवाई लानी। अज भाजे सब ही कह दिया मौजा न, अज सजनों सब ही कह दिया मौजा न। दिनों का कम मिनटा च जाता हुई ता भी टबरे के मूँह सीधे नहीं होंगे, राजी नहीं कोई कमां ने छोई। भइया दे लगू दे लाहौर, तिना दे लाऊदा कम सारा कमाना, सजनों खेती बाड़ी करने ते कने जी नहीं अपना चरवाना। अग्गे अर्ज करदे जी बोलिया, भई भाइया बलदा ने होंदी थी खेती, वो बलदा ने होंदी थी खेती, क्या मजाल जे कुदी फेरे च जाओ ढाली रही। अज ट्रैक्टर ने हथ हथ पर ढालियाँ पाओ दियाँ, लेंदा कोई पटने जो कही। चलो अजें स्याण माड़ी मोटी खेतर कमाने दित्तू भी आई अड़ी, चलो अजें स्याण माड़ी मोटी खेतर कमाने दित्तू भी आई अड़ी। तो धाना का पता पराला तो लगी जाता, हौले हौले समस्या ज्यादा जानी किश खड़ी। कल जो रोटी के भी लाले पे सकते सजनों, कल जो रोटी के भी लाले पे सकते, जे कम जो हाथ ही नहीं कुछ ही लाना सजनों, कने खेती बाड़ी करने ते जी नहीं अपना चरवाना। फिर दिखा पिछले स्याणे, ना बरखा दिखते थे ना दिखते थे धुप्पा, ना बरखा दिखते थे ना दिखते थे धुप्पा, कने अजकल दी पीढ़िया जो जरा क सेक लाना पै जाओ तो फुलदा जाता अगे तो अगे कुप्पा। चलो ये भी गल ठीक ही, फिर खेतिए मेहनत पल्ले नहीं पवा दी। चलो ये भी गल ठीक ही, फिर खेतिए मेहनत पल्ले नहीं पवा दी, अपर ता भी रखनी में तो बट्टी, जे कला जो ये माल मिलना बंद हो जा तो जमीन दी नहीं पानी फिर खाना खट्टी। तो जमीन के कमाने ते बराबर, जमीन के कमाने बराबर मौज नहीं, जे सारा टब्बर कट्ठा होने लगी पाओ कमाना सजना, कने ये जमीन खिलियाँ माता छड़ दे, इन्हें जरूर सिखा बाना। अगर अर्ज करते जी दिखा भाजो, नवीं पीढ़ी के अंदर कियाँ न कियाँ ऐसी जोत जगा, नवीं पीढ़ी के अंदर कियाँ न कियाँ ऐसी जोत जगा, पे भले लोगो कमाई ने सब कुछ मिलता, तो खेती करने ते जी नहीं अपना चरवा। जरा सोचा जे जिमीदारी करना सारे छड़ी देंगे, जरा सोचा जे जिमीदारी करना सारे छड़ी देंगे, फेरी भई अहां ते नहीं होंगी खेती कमाई, तो परमात्मा थोड़ी गस ते आई ने अहां दे मूंह चापू देना ग्राह पाई। पेटा भरने जो माड़े मोटे हड़ गोडे तो भाइयो पाने हैं ना लाना, वो पेटा भरने जो माड़े मोटे हड़ गोडे तो पाने हैं ना भाइयो लाना, कने खेती करने ते जी नहीं अपना चरवाना। एक गल होर भी, इत्थी सिंचाई दे साधन नहीं है, एक गल होर भी भाई इत्थी सिंचाई दे साधन नहीं है, उस सुखे पाने की भी आई जाती नौबत आई, जे कुत इंद्र देवता टैमा टैमा दे बढ़ते रहन तो जिमीदारे के मूँह पर जरूर जाती रिहासी आई। कई बार कमाई बताई ने भी हो जाती फसल ते बेल, वो कई बार कमाई बताई ने भी हो जाती फसल ते बेल, वो कितने किराए पर पानी फिर जाता, फिर अगे तो अगे बिगड़ता जाता खेल। फिर कमाने वाला माणू भी सोचता, वो फेरी कमाने वाला माणू भी सोचता, खाओ खसम जो छापा कजो पटोई पटोई ने कमाना, कने सजनो ये जिमीदारियाँ करने ते कने दिल नहीं अपना पिछे ढाना। अगे लास्ट विचार्ज करते जी भाग्यो, इस जमाने च इं तो कुछ जो किछ नहीं सकते गलाई, भाग्यो इस जमाने च इं तो कुछ जो नहीं सकते किछ भी गलाई, अपर जे सारे खेती करना छड़ी देन तो भुखे मरने दी नहीं सकती नौबत आई। दिखा बोलदे, वो दिखा बोलदे भाई दब्बी ने बाह कने रज्जी ने खा, क्या बोलदे भाई दब्बी ने बाह रज्जी ने खा, कितनी गल ही है सियाणी। तियां जो होरनी कमां दे ने प्रीत लांदे, तियां जो होरनी कमां ने प्रीत लांदे, तेड़ी प्रीत खेतियां ने भी पाउणी लाणी। दलीप बोलदा सजनो, तियां जे दलीप बोलदा सजनो, तियां जे माँ अपने बच्चे पालदी, वो तियां जे माँ अपने बच्चे पालदी, तियां धरती माँ असां जो पाला दी, फिर असां कहनी फर्ज अपना नवाणा, कर सजनो खेतीबाड़ी करने ते जी नहीं अपना चरवाणा। जे कला जो राशन मिलना बंद हो जाएगा फिर कुछ दिया माओ जो मासी गलाना। जय हिंद जय भारत। हाँ जी, मेरी अगली कविता ही पे गुलामी कियाँ गई कने आज़ादी कियाँ आई। सजनों अहाँ जो आज़ादी कियाँ मिली, या पर बड़े ठंडे दिल ने जरूर नज़र मारा, तिने तिने अहाँ जो गुलामी ते कटूदा, तिने ने कीतियाँ भोली ने भी दिल ते मता पसारा। तो देखा सारे ते पहले 1857 विच मंगल पांडे ने आज़ादी की कीती थी शुरू लड़ाई, अपर चलो अंग्रेजी विद्रोह का नाँ देने ये चिंगारी दिती थी कियाँ न कियाँ दवाई। वो लड़ाइया च भाग लेने फौजियों प्रति ने फिर बड़े भारी कहर बरसाए, बोलते एक एक जवान पकड़ी पकड़ के जींदे जींदे धरती जिथे दबाए। कोई जानी सकता पे तिना देश भगतों का कितना घरोया उंगाल माड़ा, कोई जानी सकता पे तिना देश भगतों का कितना क्रोए अंगाल माड़ा सजनो आज आजादी कियाँ मिलू दी या पर बड़े ठंडे दिल ने जरूर नज़र मारा। बोलते जी भई सन 1919 जलियाँ वाले बागा दी कितनी भारी दुख भारी थी कहानी। जलियाँ वाले बागा दी कितनी भारी दुख भारी थी कहानी भई नथे बेकसूर लोगों पर बेरहमिया ने वो दड़ादड़ गोलियां दी लानी। दसदे भई तिहा भगदड़ा बिच दसदे भई तिहा भगदड़ा बिच लाशा ने पूरा खूह गया था परोई लाशा ने पूरा खूह ही गया था परोई कने लाला लाजपत राज ता लाठियां खाई खाई ने जाने भी बैठे थे अपनियां खोई। ता ऊधम सिंह ने लंदन जाई ने ऊधम सिंह ने लंदन जाई ने 21 साल बाद जनरल डायर जो मारी ने देता था जवाब करारा सजना आजादी कियाँ मिली इस पर बड़े भारी ठंडे दिल ने जरूर नज़र मारा। अगे बोलते जी भी देखा 1928 सरदार भगत सिंह ने असैम्बली आला च बंब सटिया भई ये बैरी सरकार जगानी भई ये बैरी सरकार जगानी तो बदले च फांसी की फाही कने पई गई थी गला अपने च पानी। राजगुरु सुखदेव ने भी साथ पूरा पूरा था नभाया राजगुरु सुखदेव ने भी साथ पूरा पूरा था नभाया फेरी मौती का हार तिने साथियों मिली ने कने अपने अपने गला च पाया। मरने ते पहले चाएं चाएं बंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद दा लाया था इको नारा सजनो अहां जो आजादी कियां मिली कने अपने बड़े ठंडे दिल ने जरूर नज़र मारा। बोलिया जी पे फूट पाओ राज करो वो फूट पाओ राज करो अंग्रेजी ऐसी नीति अपनाई आपू मजे ने 200 साल राज किया कने हिंदुस्तानी रखे पुचा को आए। लार्ड कर्जन ने तो बंगाल के दो टुकड़े दिते थे कराई लार्ज कर्जन ने तो बंगाल के दो टुकड़े दिते थे कराए बस फिर हिंदू मुसलमान कुती बने रहा पुचा भाई भाई। आज़ादी मिलने के बाद भी कितना भारी खून खराब होया था कियाँ कियाँ किया था देशा का बंटवारा हाँ जी आज़ादी कियाँ मिली इस पर बड़े ठंडे दिल ने जरूर नज़र मारा। बोले जी भई पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम ने पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम ने घर घर गीतां गाए गए ने अपनी कलमां ने ऐसी रचना रचाई भई काले कपड़े पहने ने जेलों दियां यातना चली चली ने भी अंग्रेजों दियां चूड़ियां दित्तियां थी लाए। यशपाल कनिंदर पाल ने तो मीरपुर का नाँ लाहौरों तक चमकाया इन्हें भी जिंदगी कोई सुखा की घड़ी नहीं दिखी अंग्रेजों ने पर भी बथेरा जुलम हटाया कभी बंब बनाने का कभी पटड़िया डोने का कभी खजाने लुटने का जगह जगह जमाई रखे ने भी खाड़ा सजनो अज आजादी कियाँ मिली है पर जरूर ठंडे दिल नज़र मारा। चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की हत्या करने कोई घट पादरी नहीं कमाई देखा पुलिसा के हत्थ नहीं चढ़े थे अपनी कन्न पटकी चापू लई थी गोली चलाई। वो नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद फौज बनाई ने बोलिया तुहें मिंजो खून दिया मैं तुह जो आजादी दवानी वो तुहें मिंजो खून दिया मैं तुह जो आजादी दवानी अपर दिला दियाँ दिला च ही रही गई थी हवाई दुर्घटना च पई गई थी जान अपनी गवानी। जय हिंद अपने देशवासियों जो दे गया थे एक अनोखा नारा सजनो हाँ जो आजादी कियाँ मिली या पर बड़े ठंडे दिलों ने नज़र मारा। अगे बोलते जी भई आज़ादी की खातर जवाहर लाल ने महात्मा गांधी और देशभगते बथेरा जोर लाया देशवासी भी पिछे नहीं रहा तेने भी हर सत्याग्रह च कंधे ने कंधा मिलाया तो अंग्रेजे अहां दे लोगों की कोई घट नहीं बड़ी भारी कितु दी दुखी आत्मा तो कोई आसानियां नहीं बड़े खटू कर्म तो कितु था अंग्रेजी साम्राज्य दे खात्मा अंग्रेजों जो भारत सोने की चिड़िया थी मिलू दी तो असी जो छड़ने जो कुती थे सत्यारा कने सजनो इस पर जरूर ठंडे दिल नज़र मारा। अगे अर्ज करदे जी बोले आखिर बिच 15 अगस्त 1947 जो देश आज़ाद होया वो गोरे करी तेथी ते डंडी अपर भाइये जान जा जानी बिश हिंदुस्तान ने जो दुए हिस्से इतने बंडी। बोलते इस बंटवारे बिच बड़ा भारी होया था खून खराबा खून दी नदियां बगी गई था कोई नहीं रोकी सके था इस तनाबा खुशियां गवां च बदली गई थी इतनी मची थी चीख।

आती हैं भारी, कि कच्चे रस्ते अब सीमेंट से पटने लगे हैं, कि कच्चे रस्ते सीमेंट से अब पटने लगे हैं, इन चिथड़ों के मोल अब घटने लगे हैं। कच्चे रस्ते अब सीमेंट से पटने लगे हैं, इन चिथड़ों के मोल अब घटने लगे हैं। खद्दर की जगह अब सिल्क हो गया, कि खद्दर की जगह अब सिल्क हो गया। खरीद लिया वजूद इसका किसने, कि खरीद लिया वजूद इसका किसने। आया था कौन व्यापारी सीते हुए इन टुकड़ों को, कि सीते हुए इन टुकड़ों को। मां जी लेती है अपनी जिंदगी फिर से सारी, इसीलिए आंसुओं से मां की आंखें हो जाती हैं भारी। इसीलिए हर्ष मां की आंखें आंसुओं से हो जाती हैं भारी। अगली जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है मर्दों का क्रोशिया। मर्दों का क्रोशिया कुछ इस तरह से लिखी गई है, खुली कविता, अतुकांत कविता है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ये सच है, ये सच है कि मर्द क्रोशिया चलाना नहीं जानते, कि ये सच है कि मर्द क्रोशिया चलाना नहीं जानते। मगर वो रोज बुनते हैं, मगर वो रोज बुनते हैं अनगिनत इच्छाओं के धागों से सपनों का मफलर। मगर वो रोज बुनते हैं अनगिनत इच्छाओं के धागों से सपनों का मफलर। रोज सुबह की रोज सुबह चुपचाप निकल पड़ते हैं ढूंढने ऊन के उन धागों को, कि रोज सुबह चुपचाप निकल पड़ते हैं ढूंढने ऊन के उन धागों को। और पसीने से बनी सलाइयों पर चढ़ा देते हैं उस ऊन को, और पसीने से बनी सलाइयों पर चढ़ा देते हैं उस ऊन को। और फिर सोचते हैं कि जब शाम को ये मफलर पूरा होगा, और सोचते हैं जब शाम को ये मफलर पूरा होगा, तब मेरे अपने नहीं गुजारेंगे कड़कड़ाती सर्द रात। तब मेरे अपने नहीं गुजारेंगे कड़कड़ाती सर्द रात खुले आसमान के नीचे। तो शायद ये वही मफलर है ना हर्ष, और शायद ये तो वही मफलर है ना हर्ष जिसे तुम भी तो बुन रहे हो कई सालों से, मगर अफसोस ये आज तक कभी पूरा ना हो पाया, वो आज तक कभी पूरा ना हो पाया। अब जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक पहाड़ी कविता है, हाउ

आपको एक और पहाड़ी रचना सुनाएं कि आद होना औंदा घर से पुराना, कि आद होना औंदा घर से पुराना, मिंडलिया पर बैठी गल्ला लगाना, कि याद होना औंदा घर से पुराना, मिंडलिया पर बैठी गल्ला लगाना, अम्मा रे हाथारा घ्यू कन्ने चूरा, कि अम्मा रे हाथारा घ्यू कन्ने चूरा, बैणा भाइयां बैठी से खाना, याद होना औंदा घर से पुराना, याद होना औंदा घर से पुराना, कि स्याणा रे घरा बरसाती रा चोड़ा, स्याणा रे घड़ा बरसाती रा चोड़ा, बापू रे बलदारा प्यारा जोड़ा, कि स्याणा रे घरा बरसाती रा जोड़ा, बापू रे बलदारा प्यारा जोड़ा, भेड़ा रे उन्नारी करनी कताई, कि भेड़ा रे उन्नारी करनी कताई, निगाह बड़ा था पट्टू से धरौना, निगाह बड़ा था पट्टू से धरौना, याद होना औंदा घर से पुराना, मिंडलिया पर बैठी गल्ला लगाना, अम्मा रे हाथारा घ्यो कन्ने चूरा, बैणा भाइयां बैठी से खाना, बैणा भाइयां बैठी से खाना, कि खांदे बड़े थे मखियां माखू, कि खांदे बड़े थे मखियां माखू, कहानियां च मिलदे थे रोज डाकू, कि खांदे बड़े थे मखियां माखू, कहानियां च मिलदे थे रोज से डाकू, मिर्ग करने भालू देंदे थे डराई, कि मिर्ग करने भालू देंदे थे डराई, जाई जंगला बकरियां से चराना, याद हुण औंदा घर से पुराना, मिंडलिया पर बैठी गल्ला लगाना, याद हुण औंदा घर से पुराना, याद हुण औंदा घर से पुराना, कि अपनियां डोरियां पजदे थे दाने, कि अपनियां डोरियां पजदे थे दाने, कट्ठे रहंदे थे बच्चे सियाने, अपनी डोरियां पजदे थे दाने, कट्ठे रहंदे थे बच्चे सियाने, फेरी होया एड़ा ए जादू, फेरी होया एड़ा इथी जादू, सैरा लगे नवा घर से बसाना, सैरा लगे नवा घर से बसाना, याद हुण औंदा घर से पुराना, मिड़िया पर बैठी गल्ला लगाना, अम्मा रे हाथारा घ्यो कन्ने चूरा, बैणा भाइयां बैठी से खाना, याद हुण औंदा घर से पुराना, कि सारिया री होनी किछ ता मजबूरियां, कि सारिया री होनी किछ ता मजबूरियां, ताई आई अपने च अज इतनियां दूरियां, कि सारिया री होनी किछ ता मजबूरियां, ताई आई अपने च अज इन्नी दूरियां, न्यालपा च बैठी ग्रांवारी से बाटा, कि न्यालपा च बैठी ग्रांवारी से बाटा, साला रे दो चक्कर हरसा पक्का लगाना, याद हुण औंदा घर से पुराना, मिंडलिया पर बैठी गल्ला लगाना, याद हुण औंदा घर से पुराना, अम्मा रे हाथारा घ्यू कन्ने चूरा, बैणा भाइयां बैठी से खाना, याद हुण औंदा घर से पुराना। इसके पश्चात हम जानते हैं कि महिला प्रधान पुरुष प्रधान अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है समाज में, तो एक जो अगली कविता मैं आपको सुना रहा हूँ वो महिलाओं पे लिखी है, कि जिसका शीर्षक है मेरा दिन, कि एक महिला पूरे दिन में क्या क्या करती है और अपने लिए कब समय निकालती है। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष कविता मेरा दिन। हर सुबह देती उम्मीदों को तड़का, कि हर सुबह देती उम्मीदों को तड़का, शायद कोई पक जाए, कि हर सुबह देती उम्मीदों को तड़का, शायद कोई पक जाए, कर ली दोस्ती खट्टे मीठे से, कर ली दोस्ती खट्टे मीठे से, ताकि जीवन में कुछ तो स्वाद आ जाए, ताकि जीवन में कुछ तो स्वाद आ जाए, तपती रहती हूँ तवे की तरह, कि तपती रहती हूँ तवे की तरह, रोटी कोई मेरी कच्ची ना रह जाए, रूखी सूखी खुद को रखती, रूखी सूखी खुद को रखती, ताकि घर मेरा भूख। आगे मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, हिंदी में लिखी कविता है, कि और कौन रोशनी लाएगा, मर्यादा सब भूल गए, अनुशासन कौन सिखाएगा, काल के कपाल पर कौन लिख पाएगा, काल के कपाल पर अब कौन लिख पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।

श्रोताओं, भी आप साहित्य जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आप सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें।

श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के प्यारे से सफर चांदनी रातें कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडी दोस्त अजय कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सुनहरे से सफर की इस गीत के साथ। देखो, क्या तुमने चांद देखा है? ऐसा लगता है ना कि ये भी हमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, ये भी जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, जैसा कि ये भी हमसे हैं। लेकिन फिर भी महसूस कर पाते हो ना तुम कि मैं भी इसको इस वक्त देख रहा हूँ।

जानता हूँ कि मुझसे जुदा होकर तुम्हें मुझसे बहुत दूर चले जाना है, और ये पता भी था हमें कि हमें दूर जाना ही पड़ेगा। पर सच कहूँ, एक वादा जो किया था साथ निभाने का, एक दफ़ा फिर से मिल जाने का, बस उसका इंतज़ार हमेशा रहेगा।

एक ही दिल ही तो है जो तुझे बेहद मोहब्बत करता है, दिल से चाहता है। समझाता तो बहुत हूँ मैं इसको कि रुक जा, संभल जा, पर यह है कि संभलना ही नहीं चाहता।

सुनो, क्या तुम्हें पता है कि दिल का रिश्ता क्या होता है? बिना कुछ कहे जुड़ जाता है और टूटने से पहले कभी सोचता भी नहीं है कि कौन क्या सोचेगा, क्यों सोचेगा, किस लिए सोचेगा। बस ये एक रिश्ता है जो जुड़ जाता है।

ये दिल हमेशा बेचैन रहता है तुम्हें सोचकर, ये सोचता है कि तुम खुश हो या नहीं, कहीं मुझे सोचकर तुम तकलीफ में तो ना हो। तो देखना, हमेशा अपना ख्याल रखना मेरे ख्याल के लिए।

0: जी हाँ श्रोता, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और जी हाँ, अपने दोस्तों को, अपने खास को अपने हमेशा पास रखिएगा। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपने रेडी दोस्त आरजे कुमार के साथ। तो देखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। श्रोताएं, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफ एम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप जानने रहते हैं कार्यक्रम सुन रहे थे। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए, और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, रात्रि 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।